मना दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावही मूरख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान जो प्राणी निस दिन भजे रूप राम ते जान हर जन हर

पई चितवत रहे ओठ गौर, नानक फासी गल परी जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो न कोए कहो नानक सुन रे मना हर पावे सो होए।

बनोदा गावहे सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कशेली पतमंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी

असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख योग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख

आओ सहस्ता वनयन नान नयन है तो एक सहस मूर्त नना एक तो ही सहस पद बिमल नान एक पद गंध बिन सहस्ताव गंध एव चलत मोही सामे जोत जोत है सोए हृदय चानन सामे चानन होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जोत भावे सु आरती होए हर चरण कामल मकरंद लोभत मनो आनंद नमो आई पे।

आगे बसन सुहेला औद कटै दिन सरहणारे मन गुरमिल का सुवारे रहाओ इव संसार विकार संसेम है तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पियावे इव रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाज हो हर गुरते मने बसेरा निज कर मैल पाओ सुख सहजे बौर न होएगो पेरा अंतर जामी पुरख बेदाते सरदा मन की पूरे नानक दास एह सुख।

मद देख पूला विसर तेरा चेतन आवे नाओ। श्री राग महला पहला कोट कोटी मेरी आजा पौन पीण अपे आओ। चंद सूरज दो गुफे ना देखा सुपने सौन ना थाओ। ती तेरी कीमत ना पवे

रस सोयना रस रूपा कामण रस परमल की वास रस घोड़े रस जा मंदर रस मीठा रस मास एते रस शरीर के कह कड़ नाम निवास जित बोले पद पाई है तो बोलिया परवान फिक्का बोल विगुचना तुर मूर्ख मन अजान जोत भावे से पले होर के कहन वखान तिन मत तिन पत तिन तन पल्ले जिन हिरदे रहा सुमाए तिनका क्या सलाहना अब

सुख होए। जग सुपना बाजी बनी फिर मैं खेल खिलाए, संजोगी मिल एक से वियोगी उठ जाए। जो भाणा सोती है अवरना करना जाए, गुरमुख वस्त विसाई है सच वखर सच रास। जिन्नी सच वणंजिया गुर पूरे साबास, नानक वस्त पछाण सी

जीवन की नहीं आस, तू सर्व जियां प्रतपालगी, लेखै साध विरास, अंतर गुरमुख तू वसे, क्यों भावे त्यों निरजास, जीअरे राम जपत मनमान, अंतर लागी जल बुझी, पाया गुरमुख ज्ञान रखाओ, अंतर की गत जानिए, गुर मिल गए संग उतार, मोया जित कर जाइए, तिद जीम दिया मर मार, अनखा सब सुहावने।

दूर आपे ही, आपे मंज म्यानो, आपे वेखे सुने आपे ही, कुदरत करे जहानो, जोत पावे नानक हुक्म सोई परवानो। श्री राग महला पहला कर चौथा, कीता कहां करे मनमान, देवन हारे कहे हथ दान, पावे दे न देई सोए, कीते कहे कहे क्या होए, आपे सच पावे तिस

कर पहला जैसी की सरकार है तेजी का सब कोय गुरमुखकार तुमामणी सच घट प्रगट होए अंतर जिसके सच बस सच्चे सच्ची सोए सच मिले से ना बिछड़े तेन निकरवासा होए मेरे राम मैं हर बिन अवर न कोए सदगुर सच प्रभ निर्मला शब्द मिला वा होए राव शब्द मिले सो मिल रहे जिसनु आपे लहे मिलाए दूजे पाए को ना मिले फिर आवे जाए सब मैं एक वर्तदा एको रहा सुमाए जिसनु आप दयाल होए सो गुरमुख नाम सुमाए पढ़ पढ़ पंडित जोत की वाद करे विचार मत बुद्ध पवी ना बुझे।

ते से निर्मल हम सदबरेगारे जास हृदय जिन के हर वस तेत कट है प्रगास मन मेरे हर हर निर्मल त्याय तुर मस्तक जिन को लिखया से गुरमुख रहे लिवलाय रहाओ हर संतो देखो नदर कर निकट बसे भरपूर गुरमत जिनी पछाणिया से देखे सदा हदूर जेन गुण तेन सद मन वस अवगुणवंत्या दूर मनमुख गुण ते बारे बिन नावे मरदे चूर जिन शब्द गुरु सुन मनिया तिन मन त्याया घर सोए अन दिन भगती रतया मन तन निर्मल होए कूड़ा रंग कसुंभ का बिन सजाए दुख रोए जिस अंदर नाम प्रगास है ओ सदा

इस मन को समझाए, ये मन आलस क्या करे, गुरमुख नाम त्याय, हरहाओ हर भगत हर का प्यार है, जे गुरमुख करे विचार, पाखंड भगत ना हो गई, दुबदा बोर खुआर, सोजन रलाया ना रले, इस अंतर विवेक विचार, सो सेवक हर आखी है, जो हर राखे उर तहार, मन तन सौंपे आगे तरे, होमे विचो मार, तन गुरमुख सो प्रवान है, जे कदे न आवे हार, कर्म मिले ता पाई है, विन कर्म में पाया ना जाए, लख चौरासी तरस दे, जिस मेले सो मिले हर आए, नानक गुरमुख हर पाया, सदा हर नाम समाए, श्री राग महला तीजा, सुख सागर हर नाम है, गुरमुख पाया जाए, अंदर नाम त्याई है, सहजे नाम समाए, अंदर रचे हर सच स्यों, रसना हर गुण गाए, भाई रे जग दुखिया दूजे पाए, गुरसरनाई सुख लहे, अनगिन नाम त्याए, अरहाओ साचे मायल ना लाग गई, मन निर्मल हर त्याए, गुरमुख शब्द पछाणिए, हर अमृत नाम समाए, गुर ज्ञान प्रचंड बलाया, अज्ञान अंधेरा जाए, मनमुख मैले मल परे, होमे तृष्णा विकार, बिन शब्दे मैल ना उतरे, मर जम्मे हुए खुवार, तातर बाजी पलच रहे, ना उरवार ना पार, गुरमुख जब तब संजमी, हर के नाम प्यार, गुरमुख सदा त्याई है।

दे नित जोहे जम जाले सुपने सुख ना देखनी बहु चिंता पिर जाले सबना का दाता एक है आपे बख्श करे कहना किशु ना जावई।

समाए। जात सत संजम नाम है, विण नावे निर्मल ना होए। पूरे भाग नाम मन वसे, शब्द मिलावा होए। नानक सहजे ही रंग वर्तदा, हर गुण पावे सोए। श्री राग महला तीजा, काया साधे उर्द तप करे। विचो होमे ना जाए, अध्यात्म कर्म जे करे। नाम ना कब ही पाए, गुर के शब्द जीवत मरे। हर नाम से मन आए, सुन मन मेरे भाजे सदगुर सरना। गुर प्रसाद दी छुट्टी है, विघ भवजर शब्द गुर तरना। हर हाओ त्रैगुण सबा तात है।

तांस लहे महल हरहाव औगुणवंती गुण को नहीं बैण न मिले हदूर मनमुख शब्द न जानी अवगुण सो प्रादूर जिन्नी सच पछाणिया सचरते परपूर गुरशब्दी मन बिद्या पर मिलया आप हदूर आपे रंगन रंगयोन शब्दे लयोन मिलाए सच्चा रंग न उतरे जो सचरते लवलाए प्यारे कुंडा पव सके मनमुख बूझ न पाए जे सतगुर मिले सो मिले सच्चे।

सच खटना सच रास है, सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना विछड़े, नानक गुरमुख होए। श्री राग महला तीजा, आपे कारण करता करे, सिरट देखे आप उपाय, तब एको एक वर्तदा अलख न लिखया जाए, आपे प्रभु दयाल है, आपे दे बुझाए, गुरमति सद मनवसया सच रखे लिवलाए, मन मेरे गुर की मन लेर जाए, मन तन शीतल सब थीए, नाम से मन आए, हरहाओ जिन कर कारण तारिया सोई सार करे, गुर के शब्द पछाणिए जाए आपे नदर करे, छे जन सब दे सोने इस सच्चे दरबार, गुरमुख सच्चे शब्द रते आव मेले करतार, गुरमती सच सलाना जेदा अंत न पार आवार, धड़कड़े आपे हुकम से हुक्मे करे विचार, गुर शब्दी सलाही है हौमे विचों कोय, सातन नावे बारी अवगुणवंती रोय, सच सलागी सच लगा सच्चे नाय तृप्त हो।

लाज रुकाए गुर मिठा माया पसरिया मानुख लग माकी पते पचाए भाई रे मैं मीत सका प्रसोए पुत कलत मोह बिख है अंत बेली कोई न होए हरहाओ गुरमत हर ले उबरे लिप्त रखे सरणाए ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पद पाए गुरमुख दर गए मनिए हर आप लय गल लाए गुरमुखा नु पंथ प्रगटा दर ठाकन कोई पाए हर नाम सलाहन नाम मन नाम रहन लिवलाए अरख तुनी दर वज दे दर सच्चे सोभा पाए जिन्नी गुरमुख नाम सलाया तिना सबको कहे साबास इनकी संगत दे प्रभ मैं जाजक की अरदास नानक।

गुर पूरा आराध नित एक सकी लिवलाग अरहाओ इको भाई मित एक इको मात पिता एक सकी मन टेक है जिन जियो पिंड दिता तो प्रमणो ना विसर जिन सब केश

संग सुमाओ हर जप के आराधी है आड़ पैर गोविंद जी प्राण तान तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोह उतारेन प्रापार ब्रह्म बगसिंद श्री राग मोहल्ला पंजवां प्रीत लगी तेस सच स्यो मरे न आवे जाए ना विछोड़िया विछड़े सब में रहया सुमाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत पा।

विचार क्या थोड़ी बात गुमान रहाओ जैसे रैन प्रौण उड़चल से प्रभात क्या तू वृत्ता ग्रस्त स्यों।

पौ संत सरणी लाग चरणी, मिटे दुख अंधार, सत संतोख दया कमावे एक करणी सार। आव छोड़ सब होए एना जे दे प्रभ निरंकार, जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटया सगल ब्रह्म विचार, श्री राग महला पंजवा दुकृत सुकृत मंद संसार सगलाना, दूते रहत भगत है कोई विरला जाना, ठाकुर सर्वे समाना क्या को सुनो स्वामी तू वड़ पुरख सो जाना। रघाओ मान अवमान मंद सो सेवक नाही, तत्समदर्शी संतो कोई कोड़ मंदाही

आओ सदग बादो काल को बिन गुर काल अफार सच रते से उबरे दुविधा छोड़ विकार हो तिन के बलहारण दर सच्चे सतियार सीता ने जो पंखिया जाली बदक हाथ गुर राखे से उबरे होर पाथे चोगे साथ बिन नावे चुन सुटिए कोई न संगी साथ सचो सच्चा आखिए सच्चे सच्चा थान इन्नी सच्चा मन्या तेन मन सच ध्यान मान मुख सूचे जानिए गुरमुख जिन्ना ज्ञान सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मिलाए साजन मिले सुख पाया जम दूत मोए बिगकाए नावे अंदर होमसा नाव वसे मन आए बाज गुरु गुबार है बिन शब्दे भूल न पाए गुरमती प्रकाश होए सच रहे लिवलाए तिथे काल ना संचर ज्योति ज्योत सुमाए तू है साजन तू सुजान तू आपे मिलन हार गुर शब्दी साल आई है अंत न पारा वार तिथे काल ना अपड़े जिथे गुर का शब्द अपार हुक्मी सबे उपजे हुक्मी कार कुमागे हुक्मी काले वस है हुक्मी सच सुमागे नांग जोत पावे सोती है ये ना जनता वस किशनागे श्री राग महला पहला मन झूठे तन झूठ गए जेवा झूठी होए मुख झूठे झूठ बोलना त्यों कर सूचा होए बेन अब शब्द ना मांझिए सचे ते सच होए मुंदे गुणहीनी सुख के है फिर रलिया रसमान सी साज सब सुख ने है रहाओ फिर परदेसी जेती है धन वांडी चूरे है जो जल छोड़े मछली करण पलाव करे फिर पावे सुख पाई है जाए आपे नदर करे फिर साल आई अपना सखी सहेली नाल तन सोहे मन मोया तरती रंग निहाल सब सवारी सोनी फिर रावे गुण नाल कामन कामन आवई।

रहे सुहाग, भाई रे अवर नही मैताओ, मैं तन्ना मन धान है गुरदिया बल जाओ। अरहाओ गुरमत पत साबा तिस, तिसके संग मिलाओ, जिबन कड़ी ना जीव बिन ना वे मर जाओ। मैं अंधले नाम ना विसर एक टिकी कर जाओ, गुरु जिना का अंधला किले ना गीटाओ। बिन सतगुर नाओ ना पाई है बिन नावे क्या साओ, आए गया पछतावन जो सुन्ये कर काओ। बिन नावे दुख दिहोरी जो कलर की पीत, तावलग मैल ना पाई है जावलग साज ना चीत, सब दरपे कर बाई है निर्वाणी पद नीत। हाँ गुर पूछो अपने गुर पुछकार कमाओ, शब्द सलाही मान वसे हों में दुख जल जाओ। सहजे होए मिलावड़ा साचे सच मिलाओ, सब दरते से निर्मल तक काम क्रोध अहंकार। नाम सलाहन सत सदा हर रखे और तार, सो क्यों मनो मसारी है सब जिया का आधार। सब मरे सो मर गए

मारो वार, सब सलाए आपको वडो वडेरी होए। गुरबिन आप ना चीनिए, कह सुने क्या होए, नानक शब्द पछाणिए होमे करे न कोए। श्री राग महला पहला, बिन पिर तन सी गाईए, जो बन बाद खुआर, ना माने सुख सेजड़ी, बिन पिर बाद सीगार। दू कणो दोहागणी, ना कर सेज पतार, मान रे राम जपो सुख होए। बिन गुर प्रेम न पाईए, शब्द मिले रंग होए, हरहाओ पुर सेवा सुख पाईए, हर वर सह सीगार। सच माने पिर सेजड़ी, गूड़ा हेत प्यार, गुरमुख जान स जानी है, पुर मिली गुण चार। सच मिलो वर कामणी, फिर मोही रंग लाए, मन तन साज बगसया,

रय बक्से पवित पंडार अरहाओ रे मन ऐसी हरसो प्रीत कर जैसी मछली नीर यो अल को तो सो कणो मन तन सांत शरीर व्यंजल कड़ी न जीवई प्रभ जाने अव पीर रे मन ऐसी हरसो प्रीत कर जैसी चातक मेह सर पर थर हरी आवले एक बूंद न पवि के कर्म मिले सो पाईए किरत पया सिर देह अरे मन ऐसी हरसो प्रीत कर जैसी जल दुध होए आवटने आपे खवे दुध को खपन ना दे आपे मेल सुनिया सच वडियाई दे अरे मन ऐसी हरसो प्रीत कर जैसी चकवी सूर खेन पल नींद न सोवई जाने दूर हजूर मनमुख सोजी ना पवे गुरमुख सदा हजूर मनमुख गणत गणामणी तरता करे सोहोए ताकि कीमत ना पवे जे लोचे सब कोए गुरमत होए ता पाईए सच मिले सुख होए सच्चा रहो न टुटे जे सतगुर पेटे सोए ज्ञान पदार्थ पाईए तेर पवन सोजी होए निर्मल नाम ना विसरे जे गुण का घात होए खेल गए से पंखणु जो चुगदे सर तल कड़ी के मोद के चलना खेल अज के कल जे तू मिले सो मिले जाए सच्चा पिड़ मल बिन गुर प्रीत न उपजे पौमे मैल न जाए सो हंग आप शानिये शब्द भेद पतियाए गुरमुखे आप शानिये अवर के करे कराए मिलिया का क्या मेलिए शब्द मिले पतियाए मनमुख सोजी ना पवे।

कुआ कणी पी अंतर गर्भ गुमान, राम नामन विद्या गुरदिया सदान, मन बुद्धि केतिया केते वेद विचार, केते बंधन जी के गुरमुख मोख द्वार, सच्चो ओरे सबको ऊपर सच आचार, सबको ऊंचा आखिए नीच न दिसे कोए, एक ने पांडे साजे एक चानन क्यों लोए, कर मिले सज पाइए दुर्बक्षना मेटे कोए, साध मिले साधु जने संतोख से गुर पाए, अकथ कथा विचारिये ये सदगुरु महे सुमाए, ई अमृत संतोखया दर गए पैदा जाए, काड़ कड़वाजे किंगुरी अन दिन शब्द सुखाए, विरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए।

तन निर्मलो गुरदात करे प्रसोय अरहाओ राम नाम तन निर्मलो जे देवे दे मुनहार आगे पूछना हो वही जे बेली कुर करतार आप चिड़ाए छुट्टी आपे बख्शन हार मन गुजाने अपने धिया पूत संजोग नारी देख विगासी नारे हरख सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले तहे निस हर रस भोग चित ले वित जामुन सागत डोल डोलाए बार टूंड गुची है कर्म वस्त सुधाए मन बखो में कर्म सी गुरमुख पले पाए साकत निर्गुण आरिया अपना मूल पछाण रगत बिंद का यो तनो अग्नि पास पिराण पावने के वस देवरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगी है मुआरा लोड़े कोए सुख जीवन तसिया की है जिस गुरमुख वसिया सोए नाम होने क्या गणी जिस हर गुर दर्शन होए जो सुपने निस पुली है जब लग निंद्रा होए तू सरपन केवल जीड़ा अंतर होमे दोए गुरमत होए विचारी है सुबना एव जग लोए अग्न मरे जल पाई है जो बारक दूते माए बिन जल कमसो नाती है बिन जल

सिद्ध बहे देश दान सोर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन शेख पीर सलार तार कूज कूचा कर गए अवरे पे चलन हार सुल्तान खान मलूक उमरे गए कर कर कूच कड़ी मोत के चलना दिल समझ तू पे पहुच सबदा माए वखाणी है विरला ता बूझे कोए नानक वखाणे बेनती जलथल मही अल सोए अलाओ अलाखे गम कादर करनगार करीम सब दुनी आमन जामनी मुकाम एक रहीम मुकाम तिसनू आखी है जिस

परम भुलाए, पढ़िए कुणिए क्या कथिए, क्या मुंडो कुत्था जाए। चौथे पद में सहज है, पुरमुख पल्ले पाए, निर्गुण नाम निधान है, फैजे सोजी होए। गुणवंती सालाया, सच्चे सच्ची सोए, उलिया सहज मिलाए सी, शब्द मिलावा होए। किन सहजे सब अंध है, माया मोह गुबार, सहजे की सोजी पई, सच्चे शब्द पार। आपे बख्श मलायन, पूरे गुर करतार, सहजे अदिष्ट पछाणिए, निर्भव ज्योत निरंकार। हवना जिया का एक दाता, ज्योति ज्योत मिलावन हार, पूरे शब्द सराई है, जिदा अंत न पारावार। ज्ञानिया का तन नाम है, सहज करे व्यापार, अन दिन लाहर नाम लयन, अखुट परे भंडार। नानक तोट न आवई, तीए ते मनहार। श्री राग महला तीजा, सदगुर मिले फेर ना पवे, जन्म मरण दुख जाए। ऊरे शब्द सब सोजी होई, हर नामे रहे सुमाए, मन मेरे सदगुर से चित लाए। निर्मल नाम सद नव तनो, आप वसे मन आए। अरहाओ हर जू रखो अपनी सरनाई, क्यों रखे त्यों रहना। गुर के शब्द जीवित मरे, गुरमुख पवजल तरना, वडे भाग ना पाईए, गुरमत शब्द सुहाई। आपे मन मसिया प्रभ करता, सहजे रहा सुमाई, एक ना मनमुख शब्द ना पावे, बंधन बंद पवाया। लख चौरासी फिर आवे, बिरथा जन्म गवाया, भगता मन आनंद है, सच्चे शब्द रंग राते। अन दिन गुण गावे सद निर्मल, सहजे नाम सुवाते, गुरमुख अमृत बाणी बोले, सब आत्म राम पछाणी। एक कोसे मन एक अराध है, गुरमुख अकथ कहानी, सच्चा साहिब सेवी है, गुरमुख वस्ते मन आए। सदा रंग राते सच स्यों,

जियो। सत संगत कैसी जानिए, जिथे एको नाम खानिए, एको नाम हुक्म है, नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। क्यों जगत परम भुलाया, आपो तुद खुवाया।

तेरे अंतर शब्द वसाया सईयां से सोहागनी जिन सई नाल प्यार जियो जिन्ना भाणे का रस आया तिन विचो परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो।

तान चितवै तान संचय बन जा रहा मित्र। हर नामा हर ना सुमाल, हर नामा हर घर कदे ना सुमाले, जे होवे अंत सुखाई क्यों तन संपे माया झूठी, अंत छोड़ चलिया पछताई। जिसनु कृपा करे गुरु मिले सो हर हर नाम सुमाल, कहो तो नानक तीजे पैरे प्राणी से जाय मिले हर नाल, चौथे पैरे रहन के वन जा रहा मित्र। हर चलन वेला आंदी कर सेव पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्र। सब चली रहन वेखांदी हर सेव खिन खिन टिल मूल ना करे हो, चित अस्थिर जुग जुग हो वो। हर सेती सदमान हो रलिया जन्म मरण दुख खोवो, गुर सतगुरु स्वामी भेद ना जानो, जित मिल हर भगत सुखांदी। कहो तो नानक प्राणी चौथे पैरे सफल हो रहन भगतां दी। श्री राग महला पंजवा, पहले पैरे रहन केवन जा रहा मित्र। तार पाए ता उधरे माहे, दसी मासी मानस किया बन जा रहा मित्र। तर मोलत कर्म कमाहे, मोलत कर दीनी कर्म कमाने, जैसा लिखत तुर पाया। मात पिता भाई सुध बनता, तिन पीतर प्रभु संजोया। कर्म सुकर्म कराए आपे, इस जनता

जो जुगे जुगो सद पीढ़ी गुरु चलन दी, जो जुग पीढ़ी चले सदगुर की, जिनी गुरमुख नाम ते आया, हर पुरख ना कभी बिनसते जावे, नित देवे चढ़े सुवाया, नानक संत संत हर एको, जप हर हर नाम सुगंधी, हर राम राम मेरे बाबला, फिर मिलतन वेल वधंदी, श्री राग महला पंजवा, शांत एक ओंकार, सदगुर प्रसाद मन प्यारिया जीव मित्रा, गोविंद नाम सुमाले मन प्यारे जी मित्रा, हर निभगे तेरे नाले, संग सगाई हर नाम त्याई,

जननी जानत सुध बड़ा होत है, इतना को ना जाने जे दिन दिन अवध कटत है। मोर मोर कर अटक लागत तार, पेगत ही जामरा हसे, ऐसा तय जग परमलाया, कैसे बूझे जा मोया गए माया रखाओ। कैद कबीर छोड़ बिखिया रस, इत संगत ने चो मरना, रमैया जपो प्राणी अंत जीवन बाणी, एन बेद पवसागर तरना। जत पावे तां लागे पाओ, परम पुलाव चों जाए, उपजे सहज ज्ञान मत जागे, गुर प्रसाद अंतर लिव लागे। इत संगत ना ही मरना, हुं पछाण तां खसमें मिलना, रहाओ दूजा श्री राग त्रिलोचन का, माया मोह मन अग लड़ा प्राणी, जरा मरण पो मिसर गया, कुटंब देख विसे कमला ज्यों, पर कर जोग है कपट नरा, दूड़ा आयोह जमह तना, दिन आगलड़े में रहन न जाए, कोई कोई साजन आए कहे, मिल मेरे बीठला ले भाड़ी बलाए, मिल मेरे रमैया मैं ले छड़ाए रहाव, अनक अनक भोगराज बिसरे प्राणी, संसार सागर पे अमर पया, माया मूठा चेत सनाही, जन्म गवायो आलसिया, बिगम कोर पंथ चलना प्राणी, रवस तय ना प्रवेशन, माया मोह तब सर गया, जा तजियले संसारं, आज मेरे मन प्रगट पया है, पेखियले तमराओ तय करदल करन महाबली, तिन आगलड़े में रहन न जाए, जे को मुंह उपदेश करत है, ता वण त्रिण रतड़ा नारायण, ऐ जी तू आपे सब के जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया, श्री राग भगत कबीर जियो का, अचरज एक सुनो रे पंडिया, आप किस कहन न जाई, छोड़ नाल गणक दर्बजन मोह, तिर पौन मेख लीलाई, राजा राम अनहद किंगुरी बाजे, जाकी दिष्ट नाद लिव लागे रखाओ, पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कनक कलश एक पाया, जमे तार चोया त निर्मल, रसमय रसन चोआया, ए जो बात अनूप बनी है, पवन प्याला साजया, तीन पवन में एको जोगी, कहो कमन है राजा, ऐसे गण प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग रत और दुनी सब परम पुलानी, मन राम रसायन माता।

ऐ कृपाल गोविंद गुसाई, मेघ वरसे सब नहीं थाई, दीन दयाल सदा कृपाला, ठाण पई करतारे जियो, अपने जी जन प्रतपारे, जो बारक माता सम्हारे, दुख पंजन सुख सागर स्वामी, देत सगल आहारे जियो, जल थल पूरया मेहरबाना, सद बलिहार जायगे कुरबाना, रैन दिनस तेस सदा त्याई, जे खिर में सगल उधारे जियो, राख लिखे सगले पव्यापे, उतर गए सब सोग संतापे, नाम जपत मंत्र हरियावल, प्रभ नानक नदर निहारे जियो, माज मोहल्ला पंजवा, जिथे नाम जपिए प्रप्यारे, से अस्तल सोयन चौबारे, जिथे नाम न जपिए मेरे गोविंदा, से ही नगर उजाड़ी जियो, हर रुखी रोटी खाए समाले, हर अंतर बहार नदर निहाले, खाए खाए करे बद फैली, ज्ञान विसु की वाड़ी जियो, संता से तीरंग न लाए, सागर संग वे कर्म कमाए, दुलाब देखो ही अज्ञानी, जड़ अपनी आप पाड़ी जियो, तेरी शरण मेरे दीन दयाला, सुख सागर मेरे गुरु गोपाला, हर कृपा नान गुण गावे, राखो शर्म असाड़ी जियो, माज मोहल्ला पंजवा, चरण ठाकुर किरदे सुमाने, कल करे सब दूर पयाने, सांत सुख सहत उपजी, साधु संग ने मासा जियो, लागी प्रीत ना टूटे मुले, हर अंतर भर रहा पर पूरे, सेमर सेमर सिमर गुण गावा, ताटी जमकी फासा जियो, अमृत वर्ख अनहद बाणी, मन तन अंतर सांस वाणी, तृप्त अगाए रहे जन तेरे, सगुरु किया दिलासा जियो, जिसका सा तिस्ते फल पाया, कर कृपा प्रसंग मिलाया, आमन जान रहे वडभागी, नानक पूर्ण आसा जियो, माज मोहल्ला पंजवा, मीहो पया परमेश्वर पाया, जी जंत सब सुखी वसाया, गया कलेस भया सो साचा, हर घर नाम संभाली जियो, जिसके से

जियो पिंड सबरास तुम्हारी, तेरा जोर गोपाला जियो, सदा सदा तू है सुखदाई, निब निब लागा तेरी पाई, तारक मावा जित पावा, जा तू दे दयाला जियो, प्रभु तुम ते लेना, तू मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सहना, जिथे रखे पै कुंत साई, तू सबना के प्रतपाला जियो, सिमर सिमर नांग सो पाया, आड़ पैर तेरे गुण गाया, सगल मनोरथ पूर्ण होए, कदे न होए दुखाला जियो, माझ महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रमेघ बिठाया, जल थल महियल दहत वरसाया, सांध पई बूझी सब तृष्णा, अंध पया सब ठाई जियो, सुख दाता दुख पंजन सारा, आपे बख्श करे जी सारा, अपने कीते नूं आप प्रतपाले।

प्रकाश हुआ जी अन दिन सरगुण गावन यहाँ रखाओ तन मन खोजे ता ना ओ पाए ताप राखे ठाक रखाए गुर की बाणी अन दिन गावे सहजे भगत करावणिया इस काया अंदर।

असंत अनाड़ी कदे ना बूझै, कथनी करे तै माया नाल लूझै, अंध अग्ञानी कदे ना सीझै। इस जुग मह राम नाम निस्तारा, विरला को पाए गुरु शब्द विचारा, आप करै सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म तर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कह कर होई, नानक नाम।

आए, उत कुटुंब गृह मोहया माए, मनमुख अंधा आवै जाए, हर हर नाम देवै जन सोए, अन दिन भगत गुर सबदी होए, गुरमत

प्रगट पई जप नाम मुरारा शिव सगत मिटाइया चूका अंधियारा तुर मस्तक जिन को लिखया तिन हर नाम प्यारा हार कित बिद पाई गे संत जनो जिस देख हो जीवा हार बिन कसा ना जीवती गुर मिल्यो हरस पीवा रहाओ हाउ हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गद कीनी हर अस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी धन तन गुर सतपुरख है जिन भगत हर दीनी जे गुर ते हर पाया तो गुर हम कीनी गुण दाता हर राय है हम आप गणयारे पापी पत्थर डूब दे गुरमुख हर तारे तू गुण दाता निर्मला हम आप गणयारे हर शरणागत राख लेहो मूड मुग्ध निस्तारे।

प्रीत होवे अन्न खाए, गुर सिख प्रीत गुर मिल आघाए, हर दर्शन देओ हर आस तुम्हारी, हर कृपा लोज पूर हमारी रहाओ। चकवी प्रीत सूरज मुख लागे, मिले प्यारे सब दुख त्यागे, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लागे, बचरे प्रीत खीर मुख खाए, हिरदे बिगसे देखे माए, गुर सिख प्रीत गुरु मुख लाए, होर सा प्रीत माया मुख काचा, बिन सजाए पूरा कज पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा। गौड़ी ग्वारेरी महला चौथा, सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम त्याया हर तनी, जिन हर जपया तिन पीछे छूटी कणी, गुर सिख

रखे गुर संगती उपदे दियो हर नाम छिड़ावे तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले ता विस्म हो जाए हम जैसे अपराधी अबर कोई राख है जैसे हम सदगुर राख लिए छिड़ाए तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंधप मेरा सगा सगाए जो हमरी विद होती मेरे सदगुरा सा विद तुम घर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता।

किस रूप नहीं, किस जात नहीं, किस टंग ना मेरा, क्या मुंह ले बोले गुण बिहून, नंद पिया ना तेरा, हम पापी संग गुर उबरे, पुन सतगुर केरा, सब जियो पिंड मुख नक दिया, वर्तन को पानी, अन्न खाना कपड़ पहनन दिया, तस अन्न भुगानी, जिन दिए सो चित न आवी, पशु हो कर जानी, सब कीता तेरा वर्तदा, तू अंतर जामी, हम जंत विचारे क्या करे, सब खेल तुम स्वामी, जन नानक हाट विहाजया, हार गुलम गुलामी, गौड़ी बैरागण महला चौथा, जो जननी सो जन पालती, राखे नदर मजहार, अंतर बार मुख दे ग्रास, खिन खिन पोचार, तू सदगुर गुरसिख राखता, हर प्रीत प्यार, मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं आने, तन तन गुरु गुर सदगुर पांदा, जिन हर उपदेह दे किए।

तिस गुर मिल उदरे हर गुण गा वाही। महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रकीनी। मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग पया अत गूड़ा। हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हो गोली। जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली। अरहाओ करो विवेक संत जन पाई खुज हिरदे देख टंडोली। हर हर रूप सब जोश सबाई हर निटवसे हर कोली। हर हर निटवसे सब जग अपरंपर पुरख अतोली। हर घर प्रट कियो गुरपूर सिर वेचो गुर पै मोली। हर जी अंतर बाहर तुम शरणागत तुम वड पुरख वडोली। जन नानक अनदिन घर गुण गावे मेले सतगुर गुर वे चोली। गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी। जगदीशर पुरख विधाते जित मार्ग तुम प्रेरो स्वामी। तित मार्ग हम जाते आराम मेरा मान हर से तीराते। सत संगत मिल राम रस पाया हर रामे नाम समाते। रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते। जिनके पाग दो सा बिनसे जो गुरमत राम रस गाते। जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सर नाते। दुरमत मैल गई सब तिन की जो राम नाम रंग राते। राम तुम आपे आप आप ठाकुर तुम जेवड़ अवर ना दाते। जन नानक नाम लय ता जीवे हर जपिए हर कृपा ते। गौड़ी पूर्वी महला चौथा करो कृपा जग जी मन दाते। मेरा मन हर सेती राते सतगुर भजन दियो अत निर्मल। जप हर हर हर मन माचे राम मेरा मन तान बेद लियो हर साचे। जे काल के मुख जग सब ग्रसया गुर सतगुर के बचन हर हम बाचे। रहाओ जिनको प्रीत नहीं घर सेती ते सागत मूड न रकाचे। तिनको जन्म मरण अद पारी विच विष्टा मर मर पाचे। तुम दयाल शरण प्रतपालक मोको दीजे दान हर हम जाचे। हर के दास दास हम कीजे हम नृत करे कर नाचे। आपे सावडे प्रस्वामी हम वन जा रे है ताचे। मेरा मन तन जियो राज सब तेरी जन नानक के सा प्रसाचे। गौड़ी पूर्वी महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख पंजन एक बिनो सुनो दे कान। जेते तुम्हार जाने स्वामी तो सदगुर मेर मेरा प्राने। राम हम सदगुर पार ब्रह्म कर माने। हम मूड मुग्ध अशुद्ध मत होते गुर सदगुर कै बचन हर हम जाने। रखाओ जितने रस अन रस हम देखे तब तितने फीक फीका ने। हर का नाम अमृत रस चाखेया मिल सदगुर मीठ रस गाने। जिनको गुर सदगुर नी पेटेया ते सागत मूड देवाने। तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीप कमोए पचाने। जिनको तुम दया कर मेलो ते हर घर सेव लगाने। जन नानक हर हर हर जा प्रगटे मत गुरमत नाम समाने। गौड़ी पूर्वी महला चौथा मेरे मन तो प्रसदा ना लगे स्वामी। तो किथे हर पौ नसीए हर आपे बख्स लए पर साचा। हर आप छुड़ाए छुटिए मेरे मन जप हर हर हर मन जपिए। सतगुर की शरणाई भजको मेरे मना गुर सतगुर पीछे।

आओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम घर जानो मेरी अनदन नाम जपी सुख पाई निर्जीवा आस घर तेरी गौर सतगुर दाते पंत बताया हर मिलिया आयपा मेरी अनदन अंध पया बड़पागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश करते सब वस गत गया केरी।

दैद चल चल हांडे गुर पूरा पाया वडभागी हर मंत्र दिया मन ठांडे राम हम सतगुरु लाले कांडे रखाओ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु सांडे पर विकार पुन बहु किया हो दुत्तर पार पराडे जिन को प्रीत हृदय हर नाही तिन पूरे गंडन गांडे ज्यो पानी कागद बिनस जात है तो मन गर्भ गलाडे हम जाने कछु न जाने आखे ज्यो हार आखे तो ठांडे हम पूर चू गुर कृपा तारो या नानक उतरे कांडे गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बो परिया मिल साधु खंडल खंडाहे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मान हर ले मंडल मंडाहे पर साधु अंजलि पुन वडाहे का डंडो

प्रीत राम राय की और मार्ग पंथ बताया। मेरा जियो पिंड सब सगुर आगे जिन विछड़िया हर गल लाया। मेरे अंतर प्रीत लगी देखन को गुर हिरदे नाल दिखाया। सहज आनंद पया मन मोर गुर आगे आ विचाया। हम अपराध पाप कीने सर दुटी चोर चुराया। आप नानक शरणागत आए हर राखो लाज हर पाया। गौड़ी पूर्वी महला चौथा गुरमत बाजे शब्द अनाहद। गुरमत मनुआ गावे वड़भागी गुरदर्शन पा।

अंतर नाम निधान है मेरे गोविंदा, गुर शब्दी हर प्रव गाजे जियो, आपे शरण पवाएदा मेरे गोविंदा, हर भगत जना राख लाजे जियो, वडभागी मिल संगति मेरे गोविंदा, जन नानक नाम सिद्ध काजे जियो, गौड़ी माज मखला चौथा, मैं हर नामे घर बिरो लगाई जियो, मेरा हर प्रामित मिल

तू है मेरा गहना, तुझ निप न जाई रहना। तू मेरे लालन, तू मेरे प्राण, तू मेरे साहिब, तू मेरे खान। रहाओ जो तुम राखो तिवगी रहना, जो तुम कहो तोई मुए करना। जय पेखो ता तू बसना, निरपो नाज पोतरा रसना। तू मेरी नवर तू पंडार, रंग रसा तू मने आधार। तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया। सा गुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है। गौड़ी गुआरे री मोहल्ला पनवा, व्याप्त हर सोग विस्तार। व्याप्त सुरग नरक अवतार, व्याप्त तन निरतन पेख शोभा। मूल व्याधि व्याप्त लोभा, माया व्याप्त बहु प्रकारी। संजीवे प्र ओढ़ तुम्हारी रघाओ। व्याप्त अंगबुद का माता, व्याप्त पुत्र कलत्र संगराता। व्याप्त हस्त कोड़े अर बस्ता, व्याप्त रूप जोवन मल मस्ता। व्याप्त भूम रंग अरंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा। व्याप्त सेज महल सीगार, पंच दूत व्याप्त अंधियार। व्याप्त कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त व्याप्त उदासा। आचार व्यवहार व्याप्त ए जात, सब व्याप्त बिना रंग रात। संतन के बंधन काटे हर राय, ताको खां व्यापे माए। कहो नानक जन तूर संत पाई, ताके निटन आवे माई। गौड़ी ग्वारे री मोहल्ला पंजवा, नैनो नींद हर दिट विकार। श्रमण सोए सुनंद विचार, रसना सोई लो मीठे साध। मन सोया माया विस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रहे। साव तवस को अपनी लय रहाओ, सकल सहेली अपने रसमाती। गए अपने की खबर न जाती, मुस्तनहार पंच बटवारे। तूने नगर परे ठगहारे, उनते राखे बाप न माई। उनते राखे मीत न पाई, सर्व सियाणप ना ओए रहते। साध संग ओए दुष्ट वस होते, हर कृपा मुझ सारंग पान। संतन तूर सरबनधान, सार्ध पूजनी सदगुर संग। नानक जागे पार ब्रह्म के रंग।

मिटे कलेस सुखी होए रही है। ऐसा दाता सबगुर कहिए, तो सुख दाता जे नाम जो पावे, हर कृपा ते संग मिलावे, हरहाओ जिस होए दयाल आप मिलावे, सर्वन दान गुरु ते पावे, आप जग मिटे आमन जाना, साध के संग पार ब्रह्म पछाणा।

पाला, तय सहज अखारे अनेक अनंता, पार ब्रह्म के संगी संता, हारख अनंत सोख नहीं दिया, तो घर गुरु नानक को दिया, गौड़ी महला पनवा, कमन रूप तेरा आराधो, कमन योग ताया ले साधो, कमन गुण जो तुझ ले गावो, काबल मोल पार ब्रह्म रिझाओ, रहाओ, कमन सो पूजा तेरी करो, कमन सो विद जिद पवजल करो, कमन ताप जिद तपिया होए, कमन सो नाम होमे मलख होए, गुण पूजा ज्ञान ध्यान नाम सगल कहाल, जिस कर कृपा सदगुरु मेले दयाल, तेसी गुण

पाते मोय असनाहा, मीत हमारा अंतर्जामी, समर्थ पुरख पार ब्रह्म स्वामी। हम दासे तुम ठाकुर मेरे, मान महत नान प्रा तेरे, गौड़ी महला पंजवा। जा को तुम पै समर्थ अंगा, ताको कछ नाही कालंगा। माधव जाको है आज तुम्हारी, ताको कछ नाही संसारी ही रखाओ। जाके हृदय ठाकुर होए, ताको सहसा नाही कोए। जाको तुम दीनी प्रतीर, ताके निकट न आवे पीर। कहो नानक मैं सो गुर पाया, पार ब्रह्म पूर्ण देखाया। गौड़ी महला पंजवा, दुलभ दे पाई वड़ भागी। नाम न जपे ते आत्म घाती, मरना जाही जिना।

आओ चरण कमल आराध भगवंता हर सिमर ते मिटी मेरी चिंता सब तज अनाथ खेत शरण आयो ऊच स्थान तब से जे पायो दूख दर्द परम पव नसया करण हर नानक मन बसया गौड़ी मोहल्ला पंजवां कर कर टहल रसना गुण गाओ चरण ठाकर कई मार्ग थाओ पलो समो सिमरन की परिया सिमरत नाम है पार उतरिया रहाओ नेत संतन का दर्शन पेख प्रभ अवनासी मन में लेख सुन कीर्तन साध पै जाए।

के चरण हृदय बसाए, दुख दुश्मन तेरी हते बलाए, गुर का शब्द तेरे संग सहाय, दयाल पै सगले जी पाई, गुर पूरे जब कृपा करी, पंत नानक मेरी पूरी परी, गौड़ी महला पनवा, अनकरसा खाए जसे टोर, मोह की जेवरी बद चोर, मृतक दे सासंग बिहुना, आत जात जोनी दुखी ना रखाओ, अनक बस्त्र सुंदर पहराया, जो डरना खेत मैं डराया, सगल शरीर आव सब काम, निफुल मान को जपे।

उतरै जाए, बिन घर सिमरन सुख नहीं पाया, आरंग फीके सा माया, गुरंगे से पए निहाल, कहो नानक गुर पए है दयाल, गौड़ी मोहल्ला पंजवा, सिमर स्वामी किल बिखनासे, सोग सहज आनंद निवासे, राम जना को राम भरोसा, नाम जबत सब मिट्यो अंदेसा, रहाओ सा संगत पौ ना प्राति, गुण गोपाल गाय गे दिन राती, हर किर प्रभ बंधन छोट, चरण कमल की दिनी ओट, कहो

की पाई, सोग सहज सांत आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा, नाम रास सासंग खाटी, कहो नानक प्रभ अवधा काटी, गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत सा मिटे कलेस, चरण कम मन में परवेश, उचरो राम नाम लख बारी, अमृत रह पीओ प्यारी रखाओ, सोग सहज रसमहा आनंदा, जप जप जीवे परमानंदा, काम क्रोध लो मद खोए, साध के संग किलब सब थोए, हर कृपा प्रो दीन दयाला, नानक दीजे सादर वाला, गौड़ी महला पंजवा, जिसका दिया पहने खाए, इस आस क्यों बने माए, खमसार आन कम लागे, हौडी बदले रतन त्याग गए रखाओ, प्रभु त्याग लागत अन लोभा, दास सलाम करत का शोभा, अमृत रस खावे खान पान, जिन दिए से न जाने स्वान, कहो नानक हम लूण हरामी, बगस लो प्रभ अंतर जामी, गौड़ी महला पंजवा, प्रभ के चरण मनमय ध्यान, सगल तीर्थ मज्जन स्नान, हर दिन हर सिमरन मेरे पाई, कोर जन्म की मन ले जाई रहाओ, हर की कथा हृदय बसाई, मन बांझत सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दिवसे भगवान, हो नानक से ही जन पूरे, जिना प्राप्त साधु तूरे, गौड़ी महला पंजवा, खांदा पैन दा मुँह कर पाए, तिसनु जो है तू तरमराए, तिसो बेमुख जिन जियो पिंड दीना, होड़ जन्म पर में बोजू न रहाओ, सागत की ऐसी है रीत, चोज करे सगल विपरीत, जियो प्राण जन मन तन तारिया, सोई ठाकर मनो बसारिया, बदे विकार लिखे बोकागर, नान कुदर कृपा सो

मीत सगल मनोरथ मुक्तपादीत। ऐसा मीत करो सब कोय जाते विरथा कोई न होय। हरहाओ आपने स्वर दे ले तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया। रघना गिधि बोल तराम पूर्ण होवे सगले काम। अनक बार नानक बलिहारा सबल दर्शन गोविंद हमारा। गौड़ी मोहल्ला पंजवा कोट बिघन हिरे किन माहे। हर घर कथा सास संग सुनागे पीवत राम रस अमृत गुण जात। जप चरण मिटी खोतास रहाव सर्व कल्याण सुख सहज निधान। जा कै हृदय से भगवान औखद मंत्र तंस विचार। करने हार दे मैं तार तस परम पजो पार ब्रह्म। कहो नानक अटल इहो धर्म। गौड़ी मोहल्ला पंजवा कर कृपा पेटे गुरसोई। तित बल रोग न व्यापे कोई। राम रमन तरण पै सागर तरण सूर पारे जमकागर। हरहाओ तगुर मंत्र दी हो नाम ए आसर पूर्ण पै काम। जब तक संजम पूरी वड़ियाई गुर कृपाल हर पै सगाई। मान मुखोए गुर परम एक नानक पसरे पार ब्रह्म। गौड़ी मोहल्ला पंजवा दिखे राज ते अंधला पारी। तुख लागे राम नाम चितारी तेरे दास को तुही वड़ियाई। माया मगन नरक ले जाई रहाओ। रोग ग्रस्त चितारे नाओ दिख माते का ठाओ न ठाओ। चरण कम स्यों लागी प्रीत आन सुखा नहीं आवे चीत। सदा सदा सुमरो प्रा स्वामी मिल नानखर अंतर जामी। गौड़ी मोहल्ला पंजवा आड़ पर संगी पटवारे कर कृपा प्रो ले निवारे। ऐसा हार शरमो सब कोय सर्व कला पूर्ण प्रसोए। रहाओ महा तप्त सागर संसार प्रखिर में पार उतारन हार। अनक बंधन तोरे नहीं जाहे सिमरत नाम मुक्त फल पाहे। उक्त स्यानप इस्ते कशनाहे हर कृपा नान गुण गाहे। गौड़ी मोहल्ला पंजवा साती पाई हर को नाम। बिचर संसार पूर्ण सब काम वड़भागी हर कीर्तन गाई है। पार ब्रह्म तू देता पाई है। रहाओ हर के चरण हृदय उतार पाल सागर चढ़ उतरे पार। साधु संग करो सब कोय सदा कल्याण फिर दुख न होय। प्रेम भगत पर गुणी।

सोवत हर संग पैरुआ जाके सिमरन जम निडरुआ रघाव चरण कम प्रदे निवास सगल दुखा हो या नास आसा मान तान तन एक सचेसा की मन में टेक मां गरीबिन साध अनाथ नान प्रव राखे दे हाथ गौड़ी महला पंजवा हर हर नाम अजन कर सूचे कोड़ ग्रहण पुन फल मूचे रघाव हर के चरण हृदय मैं बसते जन्म जन्म के किल

राम नाम नेत्र सन बखान बिनसे रोग पय कल्याण पार ब्रह्म गुण अगुण विचार साधु संग मखय निस्तार निर्मल गुण गावो नित नीत गई ब्याल उभरे जनमीत मन भय क्रम प्रभ अपना त्याई नानक दास तेरी शरणाई गौड़ी महला पंजवा नेत्र प्रकाश किया गुरुदेव परम गए पूर्ण पई सेव रहाव शीतला ते रखिया बिहारी पार ब्रह्म कृपा थारी नानक नाम जपे सो जीवे सा संगर अमृत पीवे गौड़ी महला पंजवा तन ओ मस्तक तन तेरे नेत तन ओ भगत जिन तुम संगेत ना बिना कैसे सुख लईए रसना राम नाम जस कहिए रखाओ तेन ऊपर जाएगे कुर्बान नांग दिन जपिया निर्वाण गौड़ी महला पंजवा तू है मसलत तू है नाल तू है राखे सार समार ऐसा राम दीन दुनी सहाई दास की पैज रखे मेरे भाई रखाओ आगे आप तो थान भर जाके

हृदय वस्य सदा गोपाल। राम रवत सधी सो पाया, मया करी पूर्ण हराराया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे पाग, हर हर नाम अस्त्र सुहाग। गौड़ी मोहल्ला पनवा, धोती खोल विछाए हेठ। गर्द वांगू लागे पेट, बिनकर तूती मुक्त न पाई है। मुद पदार्थ नाम त्याई है रहाओ। पूजा तिलक करत इस नाना,

संतन टहलायो, एक नाम को थियो पुजारी, मोको अचरज गुरे दिखायो, पयो प्रगास सर्प उजियारा, गुर ज्ञान मने प्रगटायो, अमृत नाम पियो मन तृप्तया, अनपय ठहरायो, मान आज्ञा सर सो पाए, दुखे ठाओ गवायो, जौ सो प्रसन्न पय प्रभ ठाकुर, तब आनंद रूप दिखायो, नाकश आवत नाकश जावत, तब खेल की उहर आयो, तो नानक अगम अगम है ठाकुर, भक्त ते कर नायो, गौड़ी मोहल्ला पंजवा, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, मन ताकी ओढ़ भी जय रे, जिन तारे ब्रह्मांड खंड, हर ताको नाम ज पी जय रे रखाओ, मन की मत त्यागो हर जन, सुगम भूज सुख पाइये रे, तो प्रभ करे सोई फल मानो, सुगत ओई त्याई गे रे, ओढ़ पत ओधारे खिन में, करते बार ना लागे रे, दीन दर्द पंजन स्वामी, जे पावित से निवाजे रे, सब को माल पिता प्रतपालक, जी प्राण सुख सागर रे, तेंदे तोड़ नहीं से करते, पूरे और तनागर रे, जाज जाते नाम तेरा स्वामी, कड़कड़ अंतर सोई रे, नानक दाता की शरणाई, जाते बिरथा ना कोई रे, राग गौड़ी पूर्वी, महला पंजवा, एक ओ अंकार, सदगुर प्रसाद, हर घर कबूरा मनो विसारे, ईगा उहा सर्व सुख दाता, सगल कटा प्रत पारे रखाओ, महा कट काटे पीतर, रसना नाम पितारे, शीतल सांत सुखर सरणी, जलती अगन निवारे, गर्भ कुंड नरक ते रख, हजल पारे उतारे, चरण कमल आरा तुम मन में, जमकी त्रास बेदारे, पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर, ऊंचा अगमे पारे, गुण गावत त्यात सुख सागर, जुए जन्म नगारे, काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो, निर्गुण के दातारे, कर कृपा अपनो नाम दीजे, नानक सद बलिहारे, राग गौड़ी चेती महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुगना ही रे घर भगत बेना, जीत जन रतने मूर्ख, सा संगत जप एखे ना रहाओ, सुत संपत बनता बिनोद, छोड़ गए बो लोग भोग, हैबर गैबर राज रंग, जा चले गए मूड रंग, चुआ चंदन दे पूलिया, सो तन तरसंग रूलिया, मोय मोया जाने दूर है, कहो नानक सदा हदूर है, गौड़ी महला पंजवा, मान कर तरबे हर नाम नो, सागर लहर संसार संसार, गुर बोध पार ग्राम नो रखाओ, कल कालक अंधियारिया, गुर ज्ञान दीप उजियारिया, बिख बिखिया पसरी अत कनी, उबरे जब जब हर गुनी, मतवारो माया सोया, गुर पेड़त प्रम पखोया, कहो नानक एक तिहाया, काल कर नदरी आया, गौड़ी महला पंजवा, दीवान हमारो तुही एक, सेवा तारी गुरे टेक रखाओ, अंग जुगत नहीं पाया, गुर चाकर ले लाया, मारे पंच बिखा दिया, गुर कृपा ते दल साध्या, बगसी जो मिल एक नाम, सोग सहज आनंद विश्राम, प्रवके चाकर से पले, नानक तेन मुख उजले, गौड़ी महला पंजवा, जीरे ओला नाम का, अवर दे करन करामनो, तिन मैं पौ है जाम का रखाओ, अवर जतन नहीं पाई है, वडे पा घर त्याई है, लाख इकमती जानिए, आगे तिल नहीं मानिए, अंग बुद्ध कर्म कुमामने, ग्रे बालू नीर बगामने, प्रभ कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले, गौड़ी महला पंजवा, बार ने बलिहार ने लख बरिया, नाम हो नाम साहब को प्राण अधरिया, रहाओ करन करावन तुही एक, जी जंद की तुही टेक, राज ओम प्रा तू तनी, तू निर्गुण तू सरगुनी, ईगा ऊगा तुम रखे, गुर कृपा ते को लखे, अंतर जामी प्रसुजान, नांग तकिया तुही तान, गौड़ी महला पंजवा, हर घर हर आरा दिए, संत संघर मन मसे, पर मोह पो सदिये रहाओ, वेद पुराण सिमरत पने, सब ऊच ब्राजत जन सुने, सगल स्थान पे पीत कीन, राम सेव कह रहत कीन, लख चौरासी जून फिरे, गोविंद लोक नहीं जन्म मरे, बाल बुस जान पहो में रही, हर सासरण नानक गही, गौड़ी महला पंजवा, मन राम नाम गुण गाई है, नीत नीत घर सेवी है, सास हर त्याई है रखाओ, संत संघर मन मसे, दुख दर्द अनहेरा प्रमन से, संत प्रसाद हर जापी है, तो जन दुख ना व्यापी है, जाको गुरु हर मंत्र दे, तो उबरिया माया अगनते, नानको प्रमया कर, मेरे मन तन वसे नाम हर, गौड़ी महला पंजवा, रसना जपिए एक नाम, ईगा सुख आनंद कना, आगे जी के संग काम रखाओ,
ਕਟਕੇ ਤੇਰਾ ਅੰਗ ਰੋਗ, ਤੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਰਾ ਜੋਗ, ਹਰ ਜਨ ਜਨ ਚਾਖਿਆ, ਤਾਕੀ ਤਿਸ ਨਾ ਲਾਥੀਆ, ਹਰ ਵਿਸਰਾਮਦ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਬਹੁਰ ਨਕਤ ਹੀ ਤਾਇਆ, ਹਰ ਘਰ ਨਾਮ ਜਾਕੋ ਗੁਰਦੀਆ, ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਪਉ ਗਿਆ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਾਕੋ ਬਿਸਰੇ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਤਾਉ ਕੋ ਪੀਰ, ਸਾ ਸੰਤ ਮਿਲ ਹਰ ਅਵੇ, ਸੇ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਰਖਾਓ, ਜਾਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੇ ਬੁੱਧ, ਤਾਕ ਕੇ ਕਰਤਲ ਨਵਨ ਸਿੱਧ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਤਨੀ, ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤਾ ਕੇ ਕਮੀ, ਕਰਨੇ ਘਰ ਪਛਾਣਿਆ, ਸਰਬ ਸੂਹ ਰੰਗ ਮਾਣਿਆ, ਹਰ ਤਨ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਸੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਸੰਗ ਦੁੱਖ ਨਸੈ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੜਬੜੋ ਮੂਲ ਇਤਨੋ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗੋ ਕਿਤਨੋ ਰਹਾਓ, ਬੇ ਬਰਚਿਤ ਬੇ ਸੰਤਨਾ, ਹੁਆਉ ਸਿਉ ਰੇਹਤਨੋ, ਹਾਰ ਜੁਆਰ ਜੁਆ ਵਿਦੇ, ਇੰਦਰੀ ਵਸਲੇ ਜਿਤਨੋ, ਹਰਨ ਪਰਨ ਸੰਪੂਰਨਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਰੰਗ ਰਿਤਨੋ, ਨਾਨ ਕੁਦਰੇ ਸਾਹ ਸੰਗ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਮੈਂ ਦਿਤਨੋ, ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮੁਏ ਦਸਰੋ ਠਾਕੁਰ ਕੋ, ਤਾਨ ਪ੍ਰੋਕਾ ਖਾਨਾ ਰਹਾਓ, ਐਸੋ ਹੈ ਰੇਖਸ ਹੁਆ ਮਾਰਾ, ਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਹ ਸਵਾਰਨ ਹਾਂ।

आदो यो मन गयो न जाई, चंचल त्रिसना संग बस्त है, याते थिर न रहाई, रहाओ कठन क्रोध कट ही के पीतर, जे शुद्ध सब सराई, रतन ज्ञान सब को हर लीना, तासु कछना बसाई, जोगी जतन करत सब हारे, गुनी रहे गुन गाई, जन नानक हर पय दयाला, ताओ सबिद बने आई, गौड़ी महला नामा, साधो गोविंद के गुन गावो, मानस जन्म अमोल पायो, बिरथा काए गवाव और हाओ, पातत पुनीत दीन बंद हर, शरण ताए तुम आओ, गाय को त्रास मिट्यो जे सिमरत, तुम काहे बिसरावो, ताज अवमान मोह माया फोन, भजन राम चित को माई, उल्ले ओ मन समझाए, वेद पुराण साध मग सुनकर, निमखन हर गुण गावे रखाओ, दुर्लभ दे पाए मानस की, बिरथा जन्म सिरावे, माया मोह महासंकट बान, तास्यो रुच उपजावे, अंतर बाहर सदा संग प्रभ, तास्यो निहो न लावे, नानक मुक्त ताए तुम मानो, जे कड़ राम सुमावे, गौड़ी महला नावा, साधो राम शरण बिसरामा, वेद पुराण पढ़े को ए गुण, सिमरे हर।

कैसा डर कमन शब्द पिछाने तीन ने पावन जिन कहया तिन कहन मुखाने जिन बूझिया तिन सहज पिछाने देख विचार मेरा मन माने कीर्त सूरत मुक्त इकनाई तही निरंजन रहा सुमाई निकर व्याप रहा निचाई।

सेवा सुरत एक लिवलाए, सुख मांगत दुख आगल होए, सगल विकारी हार परोए, एक बिना झूठे मुक्त न होए, कर कर करता देखे सोए, तृष्णा अगन शब्द बुझाए, दूजा परम सह सुभाए, गुरमति नाम हृदय वसाए, साची बाणी हर गुण गाए, तरमय साचो गुरमुख पाओ, नाम बिना नाही निरठाओ, प्रेम परायण प्रीत मराओ, नदर करे ता बूझे नाओ, माया मोह सर्व जंजाला, मन मुख कुचील कुष्ट बिकराला, सगुर सेवे चूके जंजाला, अमृत नाम सदा सुख नाला, गुरमुख बूझे एक लिवलाए, निकर वासे सा सुमाए, जमण मरना ठाक रखाए, पूरे गुरते ए मद पाए, कतनी कथो न आवे ओर, गुर पुछ देखे नाही दर होर, दुख सुख भाणे किसे रजाए, नानक नीच कहे लिवलाए, गौड़ी महला पहला, दूजी माया जगत चितवास, काम क्रोध अहंकार विनाश, दूजा कौन कहा नहीं कोई, सब मैं एक निरंजन सोई रहाओ, दूजी दुरमत आखे दोए, आवे जाए मर दूजा होए, तारण गगन न देखो दोए, नारी पुरख सुबाए।

मन त्रिवतास्या अलख अपेवा, जय जय देखो तय तय साचा, बिन बूझे झगरत जग काचा, गुर समझावे सोजी होई, गुरमुख विरला बूझे कोई, कर कृपा रखो रखवाले, बिन बूझे पशु पय बेताले, गुर कया अवर नहीं दूजा, किस को देख करो अन पूजा, संत हेद पर तिरपमन तारे, आत्म चीने सो तत विचारे, साज हृदय प्रेम।

समेत गर्भ गया बिन सतगुरु हेत सहस बहु मद कीट मैं खासा अरणाशले नहो बेदासा दे संघारे बिन भगत अभ्यासा जरा संत काल जमना संघारे रक्त बीज काल नेम बेदारे दय संघार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द बीचारे दूजे पाए दैत संघारे गुरमुख साध भगत निस्तारे बूढ़ा दुर्योधन पद खोई राम न जानिया करता सोई जान को दुख पचे दुख होई जिन मेजे गुर शब्द न जानिया क्यों सुख पावे परम भुलानिया एक तिल पूले बौर पछतानिया कंस केस चांडूर ना कोई राम न चीनिया अपनी पद खोई बिन जगदीश न राखे कोई बिन गुर गर्भ न मिटिया जाए गुरमत धर्म तीर्थ हर नाए नानक नाम मिले गुण गाए गौड़ी महला पहला चोवा चंदन अंक चढ़ाओ पाठ पटंबर पैर हंडाओ बिन हर नाम कहाँ सुख पावो क्या पैरो क्या ओट दिखावो बिन जगदीश कहाँ सुख पावो रहाओ कानी कुंडल गाल मोतियन की माला लाल निकाली फूल गुलाला बिन जगदीश कहाँ सुख पाला नैन सुनोनी सुंदर नारी खोर सीगार करे अद प्यारी बिन जगदीश पजे नित खुआरी दार कर महिला से सुखाली तैन सुफूल बिछावे माली बिन हर नाम सो दे सुखाली ऐबर गैबर नेजे वाजे लस्कर नेब खुवासी पाजे बिन जगदीश झूठे दिवाजे सिद्ध कहावो हिर सिद्ध बुलाओ ताज कुल है सिर छत्र बनाओ बिन जगदीश कहां सद पाओ खान मलूक कहावो राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द न सबर सकाजा होमे ममता गुर शब्द विसारी गुरमत जानिया हृदय मुरारी परमत नानक शरण तुम्हारी गौड़ी महला पहला सेवा एक न जानस अवरे परपंच ब्याद त्यागे कवरे पाए मिले सच साचे सच रे ऐसा राम पत जन होई हर गुण गाय मिले मलत होई रहाओ उन्दो कबल सगल संसारे दुर्मत अगन जगत पर जारे सो उबरे गुर शब्द बिचारे प्रेंग पतंग कुंचर अरमीना मिर्ग मरे से अपना कीना तिसना राज तत् नहीं बीना काम चिते कामन हितकारी क्रोध बिना से सगल विकारी पत मत खोवे नाम सारी पर कर चीत मनमुख डोलाए गल जेबड़ी तंदे लपटाए गुरमुख छूट हर गुण गाए ज्यो तन विधवा पर को दे काम दाम चित पार वस से बेन पिर तृप्त न कबहू होई पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद पुराण पढ़े सुन थाटा बिन रस राते मन भो नाटा ज्यो चातरक जल प्रेम प्यासा ज्यो मीना जल भय उलासा नानक हरस पी तृप्तासा गौड़ी महला पहला हट कर मरे न लेखे पावे वेस करे बो पसम लगावे नाम सार बहुत पछतावे तू मन हर जियो तू मन सूख नाम सार।

पूरा गुर भेटे सो चगर चुकावे, जेती गए तेती क्यों नाही, गुरम ज्ञान पेट गुण गाही, होमे बंधन बंद पवावे, नानक राम पगत सुख पावे, गौड़ी महल्ला पहला, प्रथमे ब्रह्मा काले कर आया, ब्रह्म कमल पय आल न पाया, आज्ञा नीली ने परम भुलाया, जो उपजे सो काल संघारिया, हमगा राखे गुर शब्द विचार आ रखाओ, माया मोहे देवी सब देवा, काल ना छोड़े बिन कुर की सेवा।

कथन नहीं रीसै। इस पद जो अर्थ आए ले सो गुरु हमारा, नानक चिन्ह आप कहो सो अपर अपारा। तब आपे आप वर्तदा आपे परमाया, गुर कृपा ते बुझिए सब।

हर रंग रंगो, जप जेवा हर एक मंगो, हरहाओ तज होमे गुर ज्ञान भजो, मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसे सो संग न गयो, सागत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहे हो, ओड़ मदे किने गुरमुख लहे हो।

प्यारे शब्द विचारे तेजी का सो होवे पुन दान अनेक नामन क्यों अंतर मलक होवे ना बिनागत कोई ना पावे हठ निग्रह बेबाण नानक सच कर शब्द संज्ञापे।

ब्राह्मण हर भर पाया, गुर के पाए प्यारे, गौड़ी महला तीजा, फिर बिन खरी निमाणी जियो, बिन पिर क्यों जीवा मेरी माई, फिर बिन नींद ना आवे जियो, कापड़ तन ना सुहाई, कापर तन सुहावे जां पिर पावे, गुरमती चित लाईए सदा सुहागण जा सतगुर सेवे, गुर के अंक समाईए गुर शब्द मेला ता पिर रावी, ला नाम संसारे नानक कामण ना प्यारी, जा हर के गुण सारे

सखा हर जियो गुरपुरख बिधाते पुरखो बिधाता एक श्री तार क्यों मिले तुझे उड़ीनिया तर करे सेवा शीश चरणी मन आस दर्श निमानिया सास सास ना कड़ी विसर पल मुहूर्त दिन राते नानक सारंग ज्यो प्यासे क्यों मिलिए प्रवदाते एक बिनो करो जियो सुनकंत प्यारे मेरा मन तन मोहे लिया जियो देख चलत तुम्हारे चलता तुम्हारे देख मोही उदास तन क्यों तीर गुणवंत ना दयाल बाला सर्व गुण भरपूर फिर दोष नाही सुखे दाते हो मिछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया तारो तार आवो ना प्यारे हो मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हो सिर अर्पी समीत प्यारे जो प्रादे संदेसा अर्प्या ता शीस सुथान गुर पै तंग प्रभु दुखाया खिर माए सगला दुख मिटया मनो चिंदया पाया दिन रैन रलिया करे कामन मिटे सगल अंदेसा बिनवंत नानक कंत मिलया लोड़ते हम जैसा मेरे मान अंध फया जियो वजी वाधाई हर लाल आया प्यारा सब तिखा बुझाई मिलया ता लाल गोपाल ठाकुर सखी मंगल गाया ता मीत बंदप हरख उपजया दूत थाओ गवाया अनहत वाजे वजे करम प्रसंग तेज विशाई

रथ सब कलतारी गुण गाओ मना अच्युत अविनाशी सब ते ऊज दयाला बेसम पर देवन कौ एक सर्व करे प्रतपाला प्रतपाल महा दयाल दाना दया थारे सब किसे काल कंटक लोमभु नस जी जाके प्रभस तो प्रसन्न देवा सबल सेवा पई पूर्ण काला बिनवंत नानक किश पुन्नी जगत दीन दयाला गौड़ी मोहल्ला पंजवा सुन सखिए मिल उदम करेगा मनाए लय हर कंत मान त्याकर भगत ठगौरी मोह है साधु मंत सखी बस आया फिर छोड़ न जाई हे रीत पली भगवंत नानक जरा मरण पय नरक निवार उनीद करेथ जंत सुन सखिए ए परी बेनंती यो मतांत पकाइए सह सुपाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाइए कल क्लेश मिटे प्रमनस मन चिंदिया फल पाईए पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम ते आईए सगी इश करी नित सुख मनाई प्रा मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सबाए खोज लो हर संत जना संग समृद्ध पुरख मिलाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवड़ भागी माए सखी नाल वसा अपने ना प्यारे मेरा मर तन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरी नींद भली मैं अपनड़ा पिर मिलिया परम खोयो सांत सह स्वामी प्रगास पया कौल खिलिया वर पाया प्रभ अंतर जामी नानक सुहाग ना टलिया एक ओंकार सदगुर प्रसाद गौड़ी बामन अखरी मोहल्ला पंजवा श्लोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव

शास्त्र कर पातो ज्ञानी सोए जाके दृढ़ सोउ कहत सुनत कस जोग न हो ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाके उसन सीत संसर सबताक ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा थारी श्लोक आमन आए से तुम्हें बिन बूझे पद ठोर नानक गुरमुख सो बुझे जाके पाग मथोर पौड़ी या जुग में एक को आया जन्म तुम होयो मोहनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास सिमरत प्रव रहते उर्ज परे सो छोड़ छिड़ाना देवन हार मने बिसराना तारो कृपा जिसे गुसाई एत उत नानक इस बिसरो नाही श्लोक आवत हुक्म विनाश हुक्म आज्ञा पिन ना कोय आमन जाना ते मिटे नानक जे मन सोए पौड़ी एओ जी बहुत गर्भ वासे मोह मगन मीड जोन फासे इन माया त्रैगुण बस कीने आपन मोह कटे खड़ दीने ए साजन काशिप कहो उपाया जा ते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत संग मिलाए नानक ताके निट न माए श्लोक किरत कमामन शोभ अशोभ इन्ने तिन प्रभे आप बस आपन हो करे नानक बिन हर खां कमात पौड़ी एक है आप करा मनहारा आप है पाप उन विस्तारा या जुग जित जित आप है लायो सो सो पायो जो आप

कुसुमरंग बिरसोर नांग ते सरणी परो बिरस जाए मैं मोर पौड़ी रे मान बेनखार जह रचो तह तह बंधन पाखे जेबद कदू ना छूटी है साकत त्यू कुमार।

एक नाम ले मने परो यैया जन्मनहारी है और पूरे की टेक नांग ते सुख पाया जाके हीरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे ई पूत के मीत गुरपूरे उपदेसया नानक जपिए नीत पौड़ी अनदिन सिमरो तास को जो अंत सहाई होए ए बिखिया दिन चार छे छाड़ चले सब कोए ताको मात पिता सो थिया गृह बंता का संग न लिया ऐसी संच जो बिनसत नाही बस ती अपने कर जाही सा संग काल कीर्तन गाया नानक ते बौर न आया श्लोक।

जम मरे गर्भ जोन दुख पाए, मोह मगन लपटत रहे आहो आवे जाए। टहे तो टहे अब टहे परे साजना सरनाए, दुके फाहे काटिया नानक लिए सुमाए।

हर हर नाम श्रवण जे सुनिया गुरमुख जे कटरहे समाई नानक ते जन मिली वडाई श्लोक नानक नाम नाम जब जपया अंतर बाहर रंग गुर पूरे उपदेसया नरक नाए सा संग पौड़ी नन्ना नरक परे ते नाही जाते मन तन नाम सही नाम निधान गुरमुख जो जपते बिख माया मैं ना ओए खपते नन्ना कार न होता ताको ना मंत्र गुर दीनो जाको निद निधान हर अमृत पूरे ते बाजे नानक अनघ तूरे स्वरूप पत्रा की गुर पार ब्रह्म।

दृष्टि आया उस्तद करण जोग पौड़ी खखा खरा सरा होता हु जो खिर में ऊने सुबर पराहु खरा निमाना होत परानी आनदन जापे प्रव निर्वानी पावे खसम ता ओआ सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्सनहारा नानक साहेब सदा दयारा तलोक सत कहो सुन मान मेरे तरन परो हर राय उगत सियानप सगल त्याग नानक लय समाए पौड़ी ससा सियानप छाड़ एयाना हिकमत हुक्म ना प्रपतियाना सहज पाद करे चतराई संग तुहारे एक ना जाई सोऊ सोऊ जप दिन राती रे जी चले तुहारे साथी साध सेवा लावे जे आपे नानक ताको दुख न व्यापे सलोक हर घर मुखते बोलना मन बूठे सुख होए नानक सब मै रब रहया सांत अनंतर सोए पौड़ी फेरो कड़ कड़ सगल कै पूर रहे भगवान होवते आए साध सदीव दुख भंजन गुर ज्ञान हो छुटके हुए आनंद ते हो नाही ते आप अते दुख जन्मे मरन संत संग प्रताप हित कर नाम दृढ़ दयाला संते संग होद किरपाला ओरे कछु न किन्हू किया नानक सब कछ प्रभ ते हुआ सलोक लिख है कते ना छूटी है खिन खिन फूलन हार बक्सन हार बक्सल है नानक पार उतार पौड़ी लून हरामी गुनहगार बेगाना अल्प मत जियो पिंड जिन सुख दिए ताहे न जानत तत लाहा माया कारण तैस ढूंढन जाए देवन हार दातार प्रभ निमख न मने बसाए लालच चूड़ बेकार मोह या संपे मन माहे लंपड़ चोर निंद कमह तिनहू संग बिहाय तुद पावे ता बख्स रहे खोटे संग खरे नानक पावे पार ब्रह्म पान नीर तरे सलोक खात पीत खेलत हस्त

नाम की महिमा, संत दिवस, संत प्रताप, तुरत सवनस, संत का संगवड़ भागी पाईए, संत की सेवा नाम ते आईए, नाम तुल कछ अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन को ए श्लोक, बहु सतर बहु सिमरति, पेखे सर्ब टंडोल, पूज सनाही हर हरे, नानक नाम अमोल, अष्टपदी, जाप तव ज्ञान सब ध्यान, खड़ सातर सिमर तव ख्यान, योग अभ्यास कर्म त्रम किरिया, सगल त्याग बन मध्य फिरिया, अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती, नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, नौ खण पृथ्वी फिर चिर जीव, मां उदास तपी सरतीव, अग्न माए होमद प्राण, तानक असव हैवर भूमदान, न्योली कर्म करे बो आसन, जैन मार्ग संजम अद साधन, निमख निमख कर शरीर कटावे, तो पी होमे मैल न जावे, हर के नाम तमसर कश नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गद पाहे, मन कामना तीर्थ दे छुट्टे,

तरण करावन हार सुवामी, सगल कठा के अंतर जामी, अपनी गतमित जानो आपे, आपन संग आप प्रवराते, तुमरी उस्तत तुमते होए, नानक अवर न जान सकोए। सर्व धर्म सहित धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्यम में उत्तम पला, हर का नाम जपो जी सदा, सगल बानी में अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखानी, सगल थान ते ओ उत्तम थान, नानक जे कड़ वस्ते है।

सगल समगरी तुमरे सूत्र थारी, तुमते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी सलोक, तेन हार प्रभ छोड़ कै लागे आन सो आए, नानक कहू न सीजई, पिन नावे पद जाए, अष्टपदी तस वस्तु ले पाछे पावे, एक वस्त कारण विखोट गवावे, एक पी ना दे दस पी हिर ले, तो मूड़ा को खा करे, जे ठाकर सो नाही चारा, ताको कीजे सद नमस्कारा, जाके मन लागा प्रा मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा, जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया, अगंत सो अपनी दे रास, खाद पीत बरते अनदे उलास, अपनी अमान कछ भौर साहो ले, अज्ञानी मन रोस

सह सुभाव ब्रह्मज्ञानी निर्मल ते निर्मल जैसे मैल न लागे जल ब्रह्मज्ञानी कै मन होए प्रगास जैसे तर ऊपर आकाश ब्रह्मज्ञानी कै मित्र सत समान ब्रह्मज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्मज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने गए सब ते नीचा ब्रह्मज्ञानी से जन पय नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्मज्ञानी सगल कीरीना आत्मरस ब्रह्मज्ञानी चीना ब्रह्मज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्मज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्मज्ञानी सदा समंदरसी ब्रह्मज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्मज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्मज्ञानी की निर्मल जुता ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्मज्ञानी एक ऊपर आस।

कोय आपे आप नानक प्रसोय कई कोड पार ब्रह्म के दास तिन होते आत्म प्रगास कई कोड तत् के बेते सदा निहारे एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीव अमर भय सदही जीव कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस तुख सह सुमावे अपने जन कौ सा सा सुमारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण प्रभ एक है दूसर ना ही कोय नानक बलिहारण जल तल मही अल सोय अष्टपदी

हरख रंग हस कबू निंद चिंद व्यवहार कबू ऊबकस पयाल कबू बेता ब्रह्म विचार नानक आम मिला मनहार कबू नित करे बोपात कबू सोए रहे दिन रात कबू महा क्रोध विकराल कबू सर्व की हो तरवाल कबू होए बह बड़ राजा कबो पेखारी नीच का साजा कबू अब कीर्त में आवे कबू पला पला कहावे जो प्रवरा के तिल ही रहे गुर प्रसाद नांग सच कहे कबू होए पंडित करे बखियान कबू मोन तारी लावे ध्यान कबू तड़ती स्नान कबू सिर साधक हो ज्ञान कबू कीड़ हस्पतंग हो जिया अनक जोन परमे परमिया नाना रूप जो स्वांगी दिखावे।

न आवे। अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मंत्र नाम रते एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभ के सद कुरबान। श्लोक सुखी बसे मस्कीनिया, आप निवार तले। बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले। अष्टपदी जिसके अंतर राज अब महान, तो नरक पाती होवत स्वान। जो जाने मैं जो बनवंत, तो होवत विष्टा का जंत। आस को कर्मवंत कहावे, जन्म मरे बो जोन परमावे। तान पूम का जो करे गुमान, तो मूर्ख अंधा अज्ञान। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानकी खा मुक्त आगे सुख पावे। तनवंता हुए कर गरबावे, तन समान का संग न जावे। बहु लश्कर मानख ऊपर करे आस, पल पीतरता का हुए विनाश। सबते आप जाने बलवंत, किन में हुए जाए पसमंत। किसे ना बदे आप अहंकारी, धर्म रायत करे खुवारी। पुर प्रसाद जाका मिटे अपमान, तो जन नानक दरगे परवान। कोड कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगले बिरतारे। अंक तपस्या करे अहंकार, नरक स्वर्ग फिर अवतार। अंक जितन कर आत्मा नहीं द्रवे, हर दरगे को कैसे गवे। आप को जो पला कहावे, तिसे पलाई नित न आवे। सर्व की रेन जाका मन होए, को नानक ताकी निर्मल सोए। जब लग जाने मुझते कश होए, तब को सुगुना ही कोए। जब ए जाने मैं किस करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग ने चलना ही कीत। जब लग मोह मग्न संगमाए, तब लग धर्म राय देश जाए। प्रभु कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे। सहज कटे लक उड़तावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे। अनक भोग बिखिया के करे, ने तृप्तावे खप खप मरे। बिना संतोख नहीं को राजे, स्वपन मनोरथ बिरथे सब काजे। नाम रंग सर्व सुखोय, बड़भागी किसे प्राप्त होए। करन करामने आपे आप, सदा सदा

गैर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निधान दयाल भगसंद साथ तेरे की चरनी पाओ नानक कै मन एव अनराओ।

मंगल सुजाक सर्व थोक सुनहे करताक राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर गृहस्थ मैं भोगी त्याए त्याए भगते सुख पाया नानक थित पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाग सगल देव हारे अवगाह पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जनदास नाम त्यावे से त्यो गुण मैं जा को फरमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच इसके अस्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेख करे एक रंग नाना विद तीनो विस्तार प्रभ अविनाशी एक अंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहे पूर।

करै भगते आत्म कैचाए, प्रभ अपने सो रह सुमाए, जो होआ होवत सो जानै, प्रभ अपने कहो पछानै, जिसकी महिमा कौन बखानो, जिसका गुण कह एक न जानो, आठ पैर प्रभ से हजूरे, कहो नानक से ही जन पूरे, मन मेरे दिन की ओट लेहे, मन तन अपना तिन जन देहे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोग का दाता, इसकी शरण सर्व सुख पावे, इसके दर्श सब पाव मिटावे, अवर स्यान सगली छाड़, ते जन की तू सेवा लाग, आमन जान न हो भी तेरा, नानक हे जन के पूजो सद पैरा, सरोक सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ, तिसके संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ, अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल, सेवक कौ गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हेरै, गुर बचनी हर नाम उच्चरै, सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख बड़ भागी है, सतगुर सिख का हलत पलत सवार, नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमार, गुर के गृह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह, आप को कर कछना जनावे, हर हर नाम हृदय सा त्याव, मन बेचे सतगुर के पास, ते सेवक के कार्य रास, सेवा करत होए नेकामी, तिसको होद पर आप स्वामी, अपनी कृपा जियाप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस बिस्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गद जाने, सो सतगुर जिस दे हर नाव, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्वनदान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म में जान जन में पार ब्रह्म, एक आप नहीं कछ परम, सहस ज्ञान पलया ना जाई है, नान कैसा गोर बड़भागी पाई है, सबल दर्शन पेखत पुनीत, परसद चरण गद निर्मल रीत, भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुन कर बचन करन आघाने, मन संतोख आत्म पति आने, पूरा गोर अख्याओ जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेखे हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक हे पावे ते लय मिलाए, जेबा एक उस्तत अनेक, सत पुरख पूर्ण बवेक, काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगमे गोचर प्रण निरबानी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई, अनक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै, सद बलिहारी सदगुर अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने,

हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कौ दे वो माया के संग न लेप मन में रख हर हर एक अंधकार दीपक परगस नानक परम मोह दुखते ते नस तब तुम्हें ठांड वरताई अंध पया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेश पाओ चूका निरप होए बसे सगल ब्याद मनते खे नस्से

निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला तार जिन सगली मोही अपने चित्त प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोय सर्व निरंतर एको सोय ओत पोत रव्या रूप रंग पय प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कलतारी अनकबार नानक बलिहारी श्लोक साधना चले बिन भजन बिखिया सगली शार हर हर नाम कुमावना नानक यो तनसार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सा मीत बसारो चरण कमल हृदमय उर तारो करण कान सो प्रसमरथ विरड़ कर गहो नाम घर वथ यो तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्व रोग नारक मिट जाए ये तन को चार कुण टुड़तावे सो तन हर सेवा ते पावे जिस कोवनत बाचे मीत सो सो साधु संग परीत जे सोभा को करे पली करनी सा सोभा पज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवख दलाए सर्वन दान मै हर नाम निधान जप नानक दरगह परवान मन पर बुद्ध हर कै नाए दैस ताव ते आवे ठाए ताको बिगन ना लागे कोए जा कर दे बसे घर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ भव बिन से पूर्ण होए आस भगत पाया तुम परगास जित कर जाए बसे अविनाशी कहो नानक ताटी जम पासी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरे सो काचो काचा आवा गम मिटे प्रसेव आप त्याग शरण गुरुदेव यो रतन जन्म का होए उधार हर घर सिमर प्राण आधार अनक पावना छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंचित नानक फल पाए संग न चाल सो तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटुंब अर बनता इन ते कहो तुम कमल सनाथा राज रंग माया विस्तार इन ते कहो कमल छुटकार आस हस्ती रस असवारी झूठा डंप चूड़ पासारी जिन दिए ते बुझे ना बिगाना नाम सार नानक पछताना गुर की मत तू ले याने भगत बिना बो डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल रखो मन माहे जन्म जन्म के किलबिख जाहे आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गद पावो सार भूत सत हर को नाओ सह सुपाए नान गुण गाओ गुण गाव तेरी उतर समैल बिन सजाए होमे दिख पैल होए चिंत बसे सुख नाल साध ग्रासगर नाम सुमाल छाड़ सियान सगली मना सा संग पावे सच तना हर पूंजी संच करो व्यवहार ई हां सुख दरगह जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जप एको सलाह एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप ए भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूर रहो प्रव्याप अनक विस्तार एक ते भय एक अराध प्राश्त गए मन तन अंतर ए प्रवराता गुर प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरणाए नानक की प्रा बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाते प्रदान कर कृपा देवो हर नाम ताजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गाओ सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रसार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हारस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जिन तृप्ताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सोभर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध के संग परे सन्यान सब त्याग अंतर परगास अनदिन निवलाग बड़भागी जप्या प्रसोए नानक नाम रते सुख होए
सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जनको प्रभ होयो दयाल सेवक कीनू सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख प्रम गया इश पुनी सरदा सा पूरी रब रहया सत्संग हजूरी जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भगती नाम सुमाए सो क्यों बिसरे जे काल ना पन सो क्यों बिसरे जे की आ जाने सो क्यों बिसरे जिन सब कुछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे अगन मैं राख गुर प्रसाद को बिरला लाख सो क्यों बिसरे जे बिखते काढ़ जन्म जन्म का टूटा गंढ गुर पूरे तत हे बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो यो काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो भगत पै तरिगे संसार पिन भगती तन हो सीशार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़ जाल पाए विश्राम सगल दुख का होत नास नानक नाम जपो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ मन तन अंतर एही सुवाओ नेत्रों पेख दर्श सुख होय मन बिकसे साध चरण तोय भगत जना के मन तन रंग बिरला को उपावे संग एक बद्दी जे करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व सुमाए प्रभ संत दीन दयाल भगत वच्छल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जप सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन गीत हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व कुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अंतराज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत पली सुकरणी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरुमंत साध संग प्रद्यो निवास सर्व सुख नानक परगास श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन सुमति आप अपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब अकार यो कशना दृष्टेता पाप उन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाध ताबैर विरोध के संक मात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरक सोग हो किसे व्याप्त जब अपने आप पार ब्रह्म तम हो कांक सोवद परम अपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होत प्रभ केवल तनी ता बंद मुक्त को किस को गनी जा बेके घर अगमे अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रसहित सुपाय ताब से सकत कहो कत जाय जब आपे आप अपनी जोत तर तब कमन निडर कमन कद डर अपन चलते आप करने हार नानक ठाकुर अगमे अपार अविनाशी सुख अपने असन ते जन्म मरण कहो कहां बेनासन जब पूर्ण करता प्रसोय तब जम की त्रास कहो किस होय जब अवगत अगोत्र प्रावेक तब चित्र गुप्त इस पूछत लेख जब नाथ निरंजन अगोचर अगद तब कौन छुटे कौन बंधन बद्ध अपने आप की अचरजा नानक अपन रूप आप की उपरजा ये निर्मल पुरख पद होता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण ते कौन को मान कौन अवमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय शल शिद्र लगत कौ कीस जय ज्योत स्वरूपी जो संग सुमावे ते किसे पूख तमन तृप्तावे करण करामन करने हार नानक करते का नाय सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कमन माए बाप मित्र सुध पाई जय सर्व कलाया पे परवीन तय वेद कतेव कहां को चीन जब अपने आप उर तार तो सगन अब सगन कहां विचार जय अपने ऊच अपने आप नेरा ते कौन ठाकुर कौन कही है तेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद
ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਗਤ ਜਾਨੋ ਆਪ, ਜੈ ਅਸ਼ਲ ਅਛੇਦ ਪੇ ਸੁਮਾਇਆ, ਊਗਾ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪ ਤੁਮਾਇਆ, ਆਸ ਕੋ ਆਪੇ ਆਦੇਸ਼, ਇਹ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪਰਵੇਸ਼, ਜੈ ਏਕੈ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ, ਤੈ ਕੌਣ ਅਚਿੰਤ ਇਸ ਲਾਗੇ ਚਿੰਤਾ, ਜੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪ ਪਤੀਆਰ, ਤੇ ਕੌਣ ਕਥੇ ਕੌਣ ਸੁਣਨੇ ਹਾਰ, ਬਹੁ ਬੇਅੰਤ ਊਚ ਤੇ ਊਚਾ, ਨਾਨਕ ਆਪਸ ਕਉ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਜੇ ਆਪਰ ਚੋਪਰ ਪੰਚਕਾਰ, ਇਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਕੀਨੂ ਵਿਸਤਾਰ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਈ ਕਹਾਵਤ, ਕੋ ਨਰਕ ਉਹ ਸੁਰਗ ਬੰਸ਼ਾਵਤ, ਆਲ ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਜੰਜਾਲ, ਹੋਮੇ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਪਾਰ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ, ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਓ ਬਖਿਆਨ, ਆਪਣ ਖੇਲ ਆਪ ਕਰ ਦੇਖੈ, ਖੇਲ ਸੰਕੋਚੈ ਹੋ ਨਾਨਕ ਏਕੈ, ਜੇ ਅਵਗਤ ਭਗਤ ਤੈ ਆਪ, ਜੇ ਪਸਰੇ ਪਾਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਦੂਪਾ ਕਾ ਆਪੇ ਤਨੀ, ਉਨਕੀ ਸੋਭਾ ਉਨਹੂ ਬਣੀ, ਆਪੇ ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਅੰਧ ਚੋਜ, ਆਪੇ ਰਸ ਪੋਗਣ ਨਿਰਜੋਗ, ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣ ਨਾਏ ਲਾਵੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੇ

तपे तरम हारिया, भाई ए तपा ना होवी बगला है, भय साधना विचारिया। सतपुरख की तपा निंदा करे, संसारे की

नामे लिव लाव ग्रह तन साब पवित्र होए हर के गुण गाव हर नाम व्यापारी नानका वडभागी पाव पौड़ी जो तू पावे सो भला सच तेरा पाना तू सब में एक वर्तदा सब माए समाना तांतनंतर रव रहा जी अंदर जाना साध संग मिल पाई है मन सच्चे पाना नानक प्रसरणागति साध सद कुर्बाना सरोक महला पंजवा चेताई ता चेत साहेब सच्चा सो तनी नानक सदगुर सेव चढ़ बोहित पौजल पार पाओ महला पंजवा वाऊ संदे कपड़े पहरे गर्भ गवार नानक नाल ना चलनी जल बल होए।

लोभ मोह संग साधा पखे पर कृपा प्रवे अपनी हर आप परखे नानक चलत न जापनी ओ सके ना लखे। श्लोक महला पंजवा नानक सोई दिन सो सुहावड़ा जित प्रवे आवे चित जित देन विसरे पार ब्रह्म हिट पलेरी रुत महला पंजवा नानक मित्राई ते स्यों सब केश

पद हर प्रवान, सर्व त्याग फल केवल राम। गौड़ी कबीर जी, नगन फिरत जाओ पाइए जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग, क्या नांगे क्या बाधे चाम। जब नहीं चीन सयात्म राम, हरहाओ मूड मुडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति पेड़ न गई आकाई, बिंद राख जाओ तरिये पाई, खुसरे क्यों ना परमगत पाई, कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गद पाई। गौड़ी कबीर जी, संध्या प्रात स्नान कराही, ज्यों पै दादुर पानी माही, जाओ पै राम राम रत नाही, ते सब धर्म राय कै जाही रहाओ। काया रत बहुरू पर चाही, तिन को दया सुपने पी नाही, चार चरण कह बहु अगर, साधु सुपावे कल सागर। कहो कबीर बहु काय करी जय, सर्ब छोट महारस पी जय। कबीर जी गौड़ी, क्या जप क्या तप क्या व्रत पूजा, जा कर दे पाओ है दूजा, रे जन मन माधव स्यों लाई है, चतराई ना चतर पुज पाई है रहाओ। पर हर लोभ हर लोकाचार, पर हर काम क्रोध अहंकार, कर्म करत बदे अमेव, मिल पाथर की कर ही सेव। कहो कबीर भगत कर पाया, ओले पाए मिले रग राया। गौड़ी कबीर जी, गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिन ते सब उत्पाती।

अब मोए मिलो है जिया मनहारा रहाओ। या देखी परमल महकंदा तासुक बिसरे परमानंदा, कूटा एक पंच पनहारी टूटी लाज परे मत सारी, कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी ना ओ कुवटा ना पनहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा, ऐसे काल हम बहुत बसाए जब हम आराम गर्भ होए आए रघाव। योगी जति तपी ब्रह्मचारी कबहू राजा शद्रपत कबहू पेघारी, सागत मरे संत सब जीव राम रसा।

सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो पाई मेरे मन पावे रहाओ, जे कड़ राम रहया भरपूर, तिन की पाग

सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमो न मांगया पावे। बिखिया अजो सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा। रहाओ इस सुखते से ब्रह्म डराना, सो सुख हमो साज कर जाना। सनकादक नारद मुन सेखा, तिन पी तन मैं मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो पाई, ता छूटे मन कहां सुमाई। गुर प्रसादी जय दो नामा, भगत के प्रेम इन ही है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साज पछाना। इस मन को रूप न रेख्या काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ सुमाई। इस मन का कोई जाने पेओ, ए मन लीन पय सुख देओ। जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को रब रहे कबीरा। गौड़ी गुवारेरी अहे निस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध पय लिव लागे। रहाओ साधक सिद्ध सगल मुनहारे, एक नाम कल्प तरतारे। जो हर हरे सो होए न आना, कहे कबीर राम नाम पछाना। गौड़ी पी सोठ पी रे जी न लज, लाज तोय नाही। हर ताज कद काहू के जाही। रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई, सो जन पर कर जातन सोही। सो साहेब रहा पर पूर, सदा संग नाही हर।

या तत लियो शरीर बिचारी, कहे कबीर ठग सो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। आ मोको पए राजा राम सुहाई, जन्म मरण कट परम गद पाई। हरहाओ साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छिड़ाए। अमृत नाम जपो जब रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। सतगुर कीनो पर पुकार, काढ लीन सागर संसार। चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गोविंद बसे निता नदचीत। माया तप्त बुझिया अंग्यार, मन संतोख नाम आधार। जल थल पूर रहे प्रस्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी। अपनी भगत आप ही दरड़ाई, पूर्व लिखत मिलिया मेरे पाई। जिस कृपा करे जिस पूर्ण साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल के सूतक थल के सूतक, सूतक ओपत होई। जन्मे सूतक मुगे फुन सूतक, सूतक परज बगोई। कौरे पंडिया कौन पवीता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता। रघाओ नयनो सूतक बयनो सूतक, सूतक श्रवनी होई। उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परे रसोई। फासन की बेद साव को जाने, छूटन की एक कोई। कहे कबीर आराम हृदय बेचारे, सूतक तिने ना होई गौड़ी। झगड़ा एक न बे रहो राम, जो तुम अपने जन सो काम। हरहाओ यो मन बड़ा, के जासो मन मानिया। राम बड़ा कै रामे जानिया, ब्रह्मा बड़ा के जास उपाया। वेद बड़ा के जाते आया, कहे कबीर हो पया उदास। तीर्थ बड़ा के हर का दास, अराग गौड़ी चेती। देखो पाई ज्ञान की आई आंधी, सबे उड़ानी प्रम की टाटी। रहे ना माया बांधी, हरहाओ दुचित्ते की दो थून गिरानी। मोह बलेंडा टूटा, तिसना शान परी तारी ऊपर। दुर्मद पांडा फूटा, आंधी पाचे जो जल बरखे। ते तेरा जन पीना, कहे कबीर मन पया परगासा। उदय पान जब चीना, गौड़ी चेती एक ओंकार। सदगुर प्रसाद हर जस सुने, न हर गुण गावे।

इस माटी में पवन सुमाया, झूठा प्रपंच जोर चलाया, किन्हु लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी, कहे कबीर एक नीव सारी, खिन में बिनस जाए अंकारी, गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे, त्रू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल परोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े, रहाओ जत पावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चुग गई फिर आमन जानी, कहो कबीर भज सारंग पानी, उरवार पार सब एको दानी, गौड़ी नावी जोन छाड़, जो जग में आयो लागत पवन खसुम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रगाओ, गर्भ जो में उर तब करता, तो जठर अग्न में रहता, लगत रसी जोन प्रमे आयो, अब के शुड़के ठौर न ठायो, कहो कबीर पर सार्ग पानी, आर्त दिसे जात न जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्गवास ना बाची है, डरकिन नरक निवास, होना है सो होई है, मने न की जे आस, रमैया गुण गाइये, जाते पाइये परम निधान रखाओ, क्या जप क्या तव संजमो, क्या व्रत क्या स्नान, जब लग जूत न जानिए, पाओ भगत भगवान, संपै देख न हरखिए, विपत देख न रोए, जो संपै त्यो विपत है, विद ने रचिया सो होए, कहे कबीर अब जानिया, संतन हृदय मजार, सेवक सो सेवा पले, जे कड़ बसे मुरार, गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को, तैसो यो संसार।

आदि करे भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थम्भ, अहिर अखंड सो रही जाए, तो अनहद बेण सहज मय बाय, सोमवार सज अमृत चरे, त्यागत बेग सगल बिखरे।

तरखर रिसे गैराय बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल में हर का वास गुर मिल दो एक सम तरे उर्द पंकले सूदा करे बृहस्पति दिखिया देव बिहाय तीन देव एक संगलाय तीन नदी ते त्रिगुटी नागे अंश कसमल तो वे नागे सुकृत सहारे तो ए व्रत चढ़े अंत ने आप स्यों लड़े सुरखी पंचो राखे सब तो दूजी दृष्टना पैसे कबे थावर थिरकर राखे सोए ज्योत दी वट्टी कड़ में जोए बाहर पीतर पया परगास तब हुआ सगल कर्म का नास जावला कट में दूजी आन तौलो महल ना लाभे जान रमत राम स्यों लागो रंग कहे कबीर ता निर्मल अंग राग गौड़ी चेती बाणी नाम दियो जियो की एक ओंकार सदगुर प्रसाद देवा पान तारियले राम कहत जन कसना तरे रघाओ तारियले गनका बिन रूप कुबजा ब्याल अजामल तारियले चरण बदक जन तेऊ मुक्त पहे औ बल बल जिन राम कहे दासी सो जन बिदर सुदामा उग्रसैन को राज दिए जापहीन तपहीन कोलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी तेऊ तरे राग गौड़ी रविदास।

जी छे जन जुग में सुखवासी छे मुक्त पै जिन हर ताया जियो तेन टूटी जम की वासी जिन निरपो जिन हर निरपो त्याया जियो तिनका पाओ सब गवासी जिन सेव्या मेरा हर जियो ते हर हर रूप सुमासी से तन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत पंडार जी परे बेअंत तेरे भगत सलाहन तुझी हर अनक अनेक अनंत तेरी अनक करे घर पूजा जी तब तापे जपे बेअंत तेरे अनेक पढ़े बो सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंत से भगत पले जन नानक जी जो पावे मेरे घर भगवंता तू आद पुरखे परंपर करता जी तुझे वड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निचल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सो होई तुद आपे सृज सब उपाई जी तुद आपे सृज सब गोई।

नदर करे जो कुछ करना सो कर रहा अवरण करना जाई जैसा वर्ते तैसो कही है सब तेरी वड्याई काल कलवाली माया मद मीठा मन मतवाला तीवत है आपे रूप करे बो भांति नानक बपड़ा एव कहे आसा महला पहला वाजा मत पखाव जपाओ होए आनंद सदा मन चाओ एह भगत एहो तपताओ ए तरंग नाचो रख रख पाओ पूरे ताल जाने साला और नचना खुशियां मन माह हरहाओ सत संतोख वजे दोए नाल पैरी वाजा सदा निहाल राग नादनी दूजा पाओ ए तरंग नाचो रख रग पाओ पौ फेरी होवे मन चीत बहद्या उड़द्या नीता नीत लेटन लेट जाने तन स्वाहो ए तरंग नाचो रख रग पाओ।

मन का अंधला माया का बंद खीन खराब होवे नित कंद खान जीवन की बहुती आस लेखे तेरे साध गिरास ऐस अंधले दीपक दे भौजल डूबता चिंत करे कहे सुने जो माने नाव।

सकता सोई, जे सकता सकते को मारे ता मन रोस न होई। हरहाओ सकता सियो मारे पै वग कसमे सा पुरसाई, रतन विगाड़ भगोए कुत्ती मोया सार नकाई। आपे जोड़ विछोड़े आपे वेख तेरी वड्याई, जे को नाव तराए वड्डा साध करे मन पाणे। खसमे नदरी कीड़ा आवे जेते चुगे दाने, मर मर जीवे ता किश पाए नानक नाम खाने। अराग आसा कर दूजा महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर दर्शन पावे वडपाग, गुर के शब्द सच्चे बैराग। खड़ दर्शन वरते।

गुण बोली बाणी, गुरमुख हर गुण आख वखाणी, जप जप नाम मन पया आनंदा, सत सत सतगुर नाम दड़ाया, रस गाए गुण परमानंदा, रहाओ हर गुण गावे हर जन लोगा, वड़े भाग पाए हर निरजोगा, गुण विगुण माया मलतारी, विण गुण जन्म मोए अंकारी, शरीर सरोवर गुण प्रगट कीए, नानक गुरमुख मत अद कढ़ीए, आसा महला चौथा, नाम सुनी ना मुंह मन पावे, वड़े भाग गुरमुख कर पावे, नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना में तरनी काई, नाम रव्या सब साध ग्रासा, रहाओ नाम में सुरत सुनी मन पाई, जो नाम सुनावे तो मेरा मीत सखाई, नाम गीन गए मूड नंगा, पच पच मुए फिर देख पतंगा, आपे थापे थापे थापे, नानक नाम देवे घर आपे, आसा महला चौथा, गुरमुख हर घर वेल वधाई, हल लागे हर रस करसाई, हर घर नाम जप अंत तरंगा, जप जप नाम गुरमुख सारागी, मारिया काल जम कंकर पोयंगा, रखाओ हर घर गुरु में भगत रखाई, गुर तुठा सिख देवे मेरे पाई, हम में कर्म किस बेद नहीं जाने, ज्यो कुंतरन आए खाग श्री शाने, जे बड़ पाग होवे बड़ ऊचे, नानक नाम जपेसा सूचे, आसा मोहल्ला चौथा, हर घर नाम की मन भूख लगाई, नाम सुने मन तृप्ते मेरे पाई, नाम जपो मेरे गुर सुख मीता, नाम जपो नामे सुख पावो, नाम रखो गुरमत मन चीता, रहाओ नमो नाम सुनी मन सरसा, नाम लाल है गुरमत बिगसा, ना बिना कुश्ती मो अंधा, सब निफल कर्म किए दुख तंदा, हर हर हर जा जपे बड़ पागी, नानक गुरमत नाम लेव लागी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, महला चौथा, राग आसा कर छेवे के तिन, हथ कर तंत्र जावे जोगी, थोथर वाजे बेन, गुरमत हर गुण बोलो जोगी, यो मनुआ हरंग पेन, जोगी हर देव मती उपदेश, जुग जुग हर हर एको वर्त, आगे हम आदेश, हर गाओ गावे राग पात बबोले।

आग हो मारो अब हुन सोयो, कंत मिलियो मेरो सब दुख जोयो, आंगन मेरे शोभा चंद, निसबसर प्रिय संग आनंद, बस्तर हमारे रंग चलूल, सगल अपर्ण शोभा कंठ फूल, प्रे पेखी दिट पाए सगल निधान, दुट दूध की चूकी कान, साध खुशियां सदा रंग माने,

माया मूठा चेते नाही, परमे पूला बोती राही, बाहर पेख करे कनेरे, अंतर बिखय उत्तरी केरे, आबर उपदेश आप ना बूझे, ऐसा ब्राह्मण कही ना सीजे।

डूबे संग छोड़ कर कतो न जाई, हरहाओ तोट न आवे निखुट न जाए, खाए खर्च मन रहे अघाए, सो सच साहो जिस कर हर तन संचाना, इस तन ते सब जग बरसाना, तिन हर तन पाया जिस पुरब लके का लेना, जन नानक अंतवार नाम गहना, आसा मोहल्ला पंजवा, जैसे किसान बोवे किसानी, काची पाकी बाढ़ परानी, जो जन्मे तो जन हो मुआ, गोविंद भगत अस्तर है थिया, रहाव दिनते सर पर पौसी रात, रहन गई फिर हुए प्रभात, माया मोहे तो रहे अपागे, गुर प्रसाद को विरला जागे, कहो नानक गुण गई है नीत, मुख उज्जल हो निर्मल चीत, आसा महला पंजवा, नौनद तेरे सगल ने

रब रहया प्रभ सब के साथ, पूरा गोर पूरी बंत बनाई, नानक भगत मिली वड्याई। आसा महला पंजवा, गुर के शब्द बनावो इहो मन, गुर कर दर्शन संचो हर तन।

पूरे, अंध भयासा मिटे रसूरे, हरहाओ जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन त्याया, आसा महला पंजवा बांशत नाही सो बेला आई, बिन हुक्मे क्यों बुझे बुझाई, ठंडी ताती मिट्टी खाई, ओ ना बाला बूढ़ा पाई, हरहाओ नानक दास सा सरनाई, गुर प्रसाद पो पार पराई, आसा महला पंजवा सदा सदा आत्म परगास, साध संगत हर चरण निवास, राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल सांत सदा सुख पावे, केलबक जाहे सबे मन तेरे, रहाओ कहो नानक जाके पूर्ण कर्म, सगुर फेटे पूर्ण पार ब्रह्म।

साध संग गुण गाए अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा मोहल्ला पंजवा, काम क्रोध माया मद मस्तर, ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने गृह पीतर वारे। जन्म मरण चूके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल। गुर पूरे लेखिन में तारे, रहाओ सबकी रेन होए रे मनुआ। सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्य रव्या मेरा ठाकुर। दान देत सब जी सम्हारे, एको एक आप एक एक, एक एक सगला पासारे। जप जप होए सगल साध जन, एक नाम तै बहुत उधारे। गैर गंभीर बेंत गुसाई, अंत नहीं किश पारा वारे। तुमरी कृपा ते गुण गावे, नानक त्याए तै प्रभु को नाम।

पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े कर्म धर्म जुगत बो करता करने हार न जाने उपदेश करे आप ना कमावे तत् शब्द ना पछाने नांगा आया ना गोजा।

नहीं दर गए टोई, जम पुर जाए पचावे, निंदक अहला जन्म गवाया, पहुंच न सके काहू बाते, आगे ठौर न पाया रहाओ। किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, तहां बेगूता ते कोई न रख, वो किस पे करे बुकारा, निंद की गत तथू नागी, खसमे ए वे पाना, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना, संतन टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सगाई, कहो नानक संत खरा रखे, निंदक दिगे रोढ़ाई, आसा मोहल्ला पंजवा, बाहर तोय अंतर मल मैला, दोए ठौर अपने खोए, ईहां काम क्रोध मुए व्यापया, आगे मुस मुस रोए, गोंद पजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप ना मरी, नाम न सुई डोरा रहाओ। माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्र कहो तरकन लागा, तत् योग ना पछाने, उगर गया जैसे खोटा टबुआ, नदर सरापा आया, अंतरजामी सब के जाने, उसते कांश पाया, कूड़ कपट बंच ने मुनियादा, बिनस गया तत्काले, सत सत सत नानक कहया, अपने हृदय देख समाले, आसा महला पंजवा, उदम करत होवे मन निर्मल, नाचे आप निवारे, पंच जनाले वस गद रख, मन में एक अंकारे, तेरा जान नृत करे गुण गावे, रबाब पखावज ताल कुंगुरु, अनगद शब्द वजावे रखाओ, प्रथमे मन पर बोधे अपना, पाछे अवर री जावे, राम नाम जप हृदय जप, मुक्ते सगल सुनावे, तर संग साधु चरण पखारे, संत तूर तन लावे, मन तन अर्प तरे गुर आगे, सत पदार्थ पावे, जो जो सुने पेखे लै सरदा, ताका जन्म मरण दुख पागे, ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे, आसा महला पंजवा, अदम चंडाली पई ब्रह्मणी, सूदी ते सृष्टाई रे, पाताली आकाशी सखनी, लैबर बूजी खाई रे, घर की बलाई अबर सखाई, मूसा देख डराई रे, आज के वसगुर कीनो केहर, कुकर तने लगाई रे रहाओ। बाज थूनिया छपरा थामिया, नी करया कर पाया रे, बिन जड़िए ले जड़ो जड़ावा, हेवा अचरज लाया रे, दादी दाद ना पहुंचन हारा, चूपी निरनो पाया रे, मार दुलीचे बैठी ले मृतक, नयन दखालन ताया रे, सोई अजान कहे मैं जाना, जानन हार नशाना रे, कहो नानक गुर अम्यो पी आया, रसक रसक बिरसाना रे, आसा महला पंजवा, बंधन काड़ बसारे औगुण, अपना बिरद संहारिया, होए कृपाल माध पित न्याई, बारग जो प्रद पारिया, गुर सिख राखे गुर गोपाल, काड़ लिए महापवजल ते, अपनी नजर निहाल रखाओ, जाके सिमरन जम ते छुटिए, हलत पलत सुख पाईए, साध गराज जपो जप रसना, नीत नीत गुण गाईए, भगत प्रेम परम पद पाया, साल संग दुख नाठे, छिजे न जाए कि पौ न व्यापे, हर तन निर्मल गाठे, अंतकाल प्र पय सहाई, एत उत रखन हारे, प्राण मीत हीर तन मेरे, नानक सब बलिहारे, आसा महला पंजवा, जा तू साहेब ता पौ केहा, हों तुद बिन के सालाही, एक तू ता सब किश है, मैं तुद बिन दूजा नाही, बाबा बिग देख्या संसार, रख्या करो गुसाई मेरे, मैं नाम तेरा आधार रहाओ। जाने बिरथा सभा मन की, और किस पे आग सुनाई है, विण नावे सज बौराया, नाम मिले सुख पाई है, क्या कहिए किस आग सुनाइए, जे कहना सो प्रभु जी पास, सब कीता तेरा वर्त, सदा सदा तेरी आस, जे दे वड्याई ता तेरी वड्याई, एत ओत तुझे ते आओ, नानक के प्रसदा सुखदाते, मैं तान तेरा एक नाओ, आसा महला पंजवा, अमृत नाम तुम्हारा ठाकुर, इहो महारस जने पियो, जन्म जन्म टूके पै पारे, दुर्त बिनासियो परम बियो, दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर भजन तुम्हारे सतगुर, मंतन मेरा ठार थियो,
ਰਹਾਉ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਇਓ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਯੋ ਕਾਜ ਤੁਮ ਆਪ ਕੀਓ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਚਰਨ ਗਏ ਪ੍ਰ ਤੁਮਰੇ, ਹੈ ਜੇ ਵਿਖਿਆ ਭਈ ਕੀਓ, ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਨਾਮ ਪ੍ਰ ਤੁਮਰਾ, ਇਹ ਅਵਿਨਾਸੀ ਮੰਤਰ ਲੀਓ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨਾ, ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਮੇਰਾ ਬੈਰ ਗਿਓ, ਤਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ, ਜਿਤ

आगे हीते सब किश हुआ, अवर के जाने ज्ञाना, ऊर चूक अपना बार्ग बक्सया, पार ब्रह्म भगवाना, सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन को राख लिया, काटिया रोग मास उपाया, हर अमृत मुख नाम दिया, हरहाओ अनक पाप मेरे पर हरिया, बंधन काटे मुक्त पए, अंधकूप महा कोरते बहा पकर गुर काढ लिए, निरपो पए सगल पो मिटिया, राखे रखन हारे, ऐसी दात तेरी प्रा मेरे, कार्ज सगल सवारे, गुण निदान साहेब मन मेला, शरण पया नानक सोहेला, आसा महला पनवा, तू विसरे ता सब को लागू, ईत आवे ता सेवा, अवर न को दूजा सूज, साचे अलख अपेवा।

काऊ न आवत काम, संत प्रसाद ताको जपिए नाम, साध संग मन सोवत जागे, ता प्रभु नानक मीठे लागे। आसा महला पंजवा, एको एकी नैन निहारो, सदा सदा हर नाम सुमारो, राम रामा रामा गुण गावो, संत प्रसाद साध के संगे, हर हर नाम त्यावो रे अरहाओ। सगल समगरी जाके सूद परोई, कड़कड़ अंतर रव्या सोई, ओबद परलो खिन में करता, आप लेप निर्गुण रहता, करन करावन अंतर जामी, आनंद करे नानक का स्वामी। आसा महला पंजवा।

और पूरे के चरण गए, और जन्म के पाप लहे, रतन जन्म यो सबल पया, कहो नानक प्रभु करी माया, आसा महला पंजवा। सतगुर अपना साध सदा सुमारे, गुर के चरण के संग चारे, जाग रे मन जागन हारे, बिन अवर न आवस कामा, झूठा मोह मिथ्या पसारे, रहाओ गुर की बाणी सो रंग लाए, गुर किरपाल होए दुख जाए, गुर बिन दूजा ना गीताओ, गुर दाता गुर देवे नाओ, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर आप, आठ पैर नानक गुर जाप, आसा महला पंजवा। आपे पेड़ विस्तारी साख, अपनी खेती आपे राख, जद कद पेखो एक ओगी, कड़कड़ अंतर आपे सोई, रहाओ आपे सूर किरण विस्तार, सोई गुप्त सोई आकार, सरगुण निर्गुण थापे नाव, दो मिल एक की नो ठाओ, कहो नानक और ब्रह्म पखोया, अंध रूप सब नयन अलोया, आसा महला पंजवा। उगत सियानप किशु न जाना, दिन रहन तेरा नाम खाना, मैं निर्गुण गुण ना ही कोय, तरन करावन हार प्रसोय, रहाओ मूर्ख मुगध अज्ञान विचारी, नाम तेरे की आस मन तारी, जब तब संजम कर्म न साधा, नाम प्रभु का मने अराधा, किशु न जाना मत मेरी तोरी, विनवत नानक ओढ़ प्रातोरी, आसा महला पंजवा। हर हर अखर दोए ए माला, जबत जबत पै दीन दयाला, करो बेनती सदगुर अपनी, कर किरपा रखो सरनाई, मुको देव हरे हर जपनी, हरहाओ हर माला और अंतर तारे, जन्म मरण का दुख निवारे, हृदय संभाले मुख हर हर बोले, सो जान ए तुत कते न डोले, कहो नानक जोरा चैनाए, हर माला ताके संग जाए, आसा महला पंजवा। जिसका सब किसका होए, हे जन लेपना व्यापे कोए, हर का सेवक सदगी मुक्ता, जो करे सोई फल जान के, हाथ निर्मल दास की जुगता, रहाओ सगल त्यागर सरणी आया, हे जन काम व्यापे माया, नाम निधान जाके मन माहे, जिसको चिंता सुपने नाहे, कहो नानक गुरपूरा पाया, परम मोह सगल बिनसाया, आसा महला पंजवा। जो सो प्रसन्न होयो प्रा मेरा, ता दुख परम कौ कैसे नेरा, सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी, मोय निर्गुण कौ लिहो उधारी, रहाओ मिट गया दुख सारी चिंता, फल पाया जब सदगुरु मंता, सोई सत सत गए सोए, सेमर सेमर रख कंठ परोए, कहो नानक कौन ओ कर्मा, जाके मन मसिया घर नम्मा, आसा महला पंजवा। काम क्रोध अंकार विभूते, हर सिमन कर हर जन छूटे, सोए रहे माया मदमाते, जागत भगत सिमरत हर राते, रहाओ मोह परम्बो जोन पवाया, अस्तिर भगत हर चरण ते आया, बंधन अंध कूप गृह मेरा, मुक्ते संत बुझे हर नेरा, कहो नानक तो प्रसरणाई, ईहा सुख आगे गद पाई, आसा महला पंजवा। तू मेरा तरंग हम मीन तुम्हारे, तू मेरा ठाकुर हम तेरे द्वारे, तू मेरा कर्ता हम सेव

नरक सुर्ग फिर अवतारा। कहो नानक जो लाया नाम, सबल जन्मता का प्रवान। आसा महला पंजवा, सोए रही प्रभ खबर न जानी। और पया बौर पछतानी, प्रे प्रेम सहज मन अंध तरोरी। प्रभ मिलबे की लालसा, ताते आलस कहां करोरी। रहाओ कर्म अमृत आन निसारयो, खिसर गयो तूम पर डारयो। साध मोहे लादी अंकारे, दोष नहीं प्रभ करणे हारे। साध संग मिटे परम अंधारे, नानक मेली सिर जनहारे। आसा महला पंजवा, चरण कमल की आस प्यारे। जम कंकर नस गए विचारे, तू चित आवे तेरी माया। सिमरत नाम सगल रोग खया। रहाओ अनक दुख देवे अवरा, कहो पहुंच न साके जन तेरे। कहो दर्श तेरे की प्यास मन लागी, सहज आनंद बसे बैरागी। नानक की अरदास सुनी जे, केवल नाम हृदय मैं दीजे। आसा महला पंजवा, मन त्रिप्तानो मिटे जंजाल। प्रभ अपना होया कृपाल, संत प्रसाद परी बनी। जाके गृह सब किस गए पूर्ण।

सद निर्मल होए, सुनो मीत ऐसा प्रेम प्यार, जी प्राण घड़ घड़ आधार, रहाओ प्रभु की प्रीत पै सगल निधान, प्रभु की प्रीत हृदय निर्मल नाम, प्रभु की प्रीत स शोभावंत, प्रभु की प्रीत स मिटी है चिंत, प्रभु की प्रीत तो पव जल तर, प्रभु की प्रीत जमते नहीं डरे, प्रभु की प्रीत सगल उधारे, प्रभु की प्रीत चले संगारे, आपो कोई मिले ना फूले, जिस कृपाल तिस सास संकूले, ओ नानक तेरे कुर्बान, संत ओढ़ पर तेरा तान, आसा महला पंजवा, उबत होए के राज कुमाया, कर कर अनर्थ विहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रवस्ते डार अवर को दीनी, काग गगरिया अंब मझरिया, गर्भ गर्भ वाहू में परिया, रहाओ निरपो होयो पया निहंगा, चीतन आयो करता संगा, लश्कर जोड़े किया संभाहा, निकस्या भूख त होए गयो स्वाहा, ऊंचे मंदर मैल अररानी, हस्त कोड़े जोड़े मन पानी, वड परवार पूत अरतिया, मोए पचे पच अंधा मुआ, जिने उपाह तिने बिनाहा, रंग रस जैसे सुबनाहा, सोई मुक्त इस राजमाल, नानक दास जिस खसम दयाल, आसा महला पंजवा, इन सो प्रीत करी कनेरी, जौ मिलिए तो वधे वधेरी, कल चमड़ी जो छोड़े नाही, ला छुट्टो सगुर की पाई, जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलो वजी वधाई, रहाओ ऐसी सुंदर मन को मोह, बाढ़ घाट गृह बन बन जोह, मतन लागे होए के मीठी, गुर प्रसाद में खोटी जीठी, अगर कुसके वडे ठगाऊ, छोड़े नाही बाप न माऊ, मिली अपने उनले बंदे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन पया आनंद, पौ चूका टूटे सा फंद, कहो नानक तैं सतगुर पाया, हर सगला में सुखी बसाया, आसा महला पंजवा, आठ पैर निट कर जाने, प्रभु का किया मीठा माने, एक नाम संतन आधार, होए रहे सबकी पक्षार, संत रहे सुनो मेरे पाई, हुआ की महिमा कथन न जाई, रहाओ वर्तन जाके केवल नाम, अंदर रूप कीर्तन विश्राम, मित्र सत्र जाके एक समाने, प्रभु अपने बिन अवर ना जाने, कोट कोट अग काटन हारा, दुख दूर करन जी के दातारा, सूर वीर बजन के बली, कौला बपरी संति शली, ताका संग बाचे सुरदेव, अमोग दर्श सबल जाकी सेव, कर जोड़ नानक करे अरदास, मुझे संते टहल दीजे गुणतास, आसा महला पंजवा, सगल सुख जग एक के नाम, सगल धर्म हर के गुणगाम, महा पवित्र साध का संग, जिस पेड़त लागे प्रवरंग, गुर प्रसाद होए आनंद पावे, जे सिमरत मन होए परगासा, ताकि गतमित कहन ना जावे, रहाओ वर्तनेम मजन तिस पूजा, वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा, महापुनीत जाका निर्मल थान, साध संगत जाके हर हर नाम, प्रत्यो जोजन सगले पवन, पद पुनीत ताकि पगरेन, जाको पेट्यो हर हर राय, ताकि गतमित कथन ना जाए, आड़ पैर कर जोड़ तिहावो, उन साधा का दर्शन पावो, मुए गरीब को लेहो रलाए, नानक आए पैसरनाए, आसा महला पंजवा, आड़ पैर उद किसनानी, तदी पोग लगाए सो ज्ञानी, बिरथा काहू छोड़े नाही।

पुत्र ऐसी स्त्री एक राम उपाई उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे पाई रहाओ पाठ गौरी सब जग जोया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोया गुरमुख नाम लगे से सोया वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे ये सदगुर की सरना माया मोहे सबो जग बाधा हमे पचे मनमुख मुँह राखा गुरु नानक बां पकड़ हम राखा आसा महला पंजवा सर्व दुख जब सरे स्वामी ईगा उहा कामना प्राणी संत त्रिपता से हर घर त्याय कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख पर तुमरी रिजाए रहाओ संग होवत को जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन कछ दिया ते चित तनाहे मां बिखिया मैं दिन रैन जाहे कहो नानक प्रसिमरो एक गद पाईगे गुर पूरे टेक आसा महला पंजवा नाम जबत मन तन सब हरिया कालमा दोख सगल पर हरिया सोई दिवस पला मेरे पाई हर गुण गाए परम गद पाई रहाओ साध जना के पूजे पैर मिटे उपद्रे मन ते बैर गुर पूरे मेल चगर चुकाया पांच दूत सब वस गद आया जिस

सर्व सुख पावे, आवर काहू पै बौड़ ना जावे, सदा आनंद आनंदी साहेब, गुण निधान नित नित जापीए, बलिहारी ते संत प्यारे, जिस प्रसाद प्रभ मनवासी ए रहाओ, जाका दान मिखूटे नाही, भली पांत सब सह सुमागी, जाकी बख्श ना मेटे कोई, मन वासाई गे सचा सोई, सगल समग्री गृह जाके पूरन, प्रभ के सेवक

बंधन काट सेवक कर राखे अमृत बानी रसना चाखे वडे भाग पूज गुर चरना सगल त्याग पाई प्रसरना गुर

तेज चिर जीवन उपजिया संयोग उदरे माए आए किया निवास माता कै मन बहुत विगास जम्या पूत भगत गोविंद का प्रगटिया सामने लिखिया तुरका रहाओ। दसी मासी उगुं बालक जन्म लिया मिटिया सोग मां आनंद चिया गुरबाणी सखी आनंद गावे साचे साहिब कै मन पावे। वदी वेर बो पीढ़ी चाली धर्म कलागर बंद बहाली मन चिंदिया सदगुरु दिवाया पै अचिंत एक लिवलाया ज्यो बालक पिता ऊपर करे बहुमान बुलाया बोले गुर के पान गुजी शन्नी नाही बात गुर नानक तुठा की नींदात आसा महला पंजवा गुर पूरे राख्या दे हाथ प्रगट पया जनका प्रताप गुर गुर जपी गुरु गुर त्याई जी की अरदास गुरु पे पाई रहाओ। शरण परे साचे गुरदेव पूर्ण होई।

तद गीते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जावला हुक्मना बूझता तभी लो दुखिया गुरम हुक्म पछाणिया तभी ते सुगिया ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा गुर की सेवा सेवको नानक खसमे बंदा आसा महला पंजवा सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ गृह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ बलिहारी गुरे अपने साध सद बल जाओ गुरु विटो हो वारे जिस मिल सच सुवाओ रहाओ सागन अपसागन किसको लगे जे चीत न आवे।

मार्ग पंथ सुम्हारी ना दृढ़ गुर मन में दिया मोरी तसा बुझारी बिन पी गावो रह नी गावो गावो सास सास रसनारी सत्संगत में विसास होए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक कहो त्यो दान दो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवणी कथा नै

निकटी होए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पै सेवक तत्काल होए आवे। रहाओ तिस सेवक के हों बलिहारी, जो अपने प्रभावे तिस की सोए सुनी मन हरिया।

त्याग सगल सियाणपा आठ पैर प्रवजाप मीत सखा सहाय संगी ऊच अगम अपार चरण कवन बसाए हृदय जी को आधार कर कृपा प्रपार ब्रह्म गुण तेरा जस गाओ सर्व सुख वड्डी वड्याई जप जीवे नानक नाओ आसा महला पंजवा उदम करो करावो ठाकुर देखत साधु संग हर हर नाम चिरावो रंगन आपे ही प्रवरंग मन में राम नामा जाप।

भूत मूड़ जे मुग्ध होते, सब लगे तेरी सेव रखाओ। तू आप करता सब सृट तरता, समय रहा सुमाए धर्म राजा बिस्माद होआ। सब पई पैरी आए, साजुग त्रेता द्वापर पणिए, काल युग ऊतमो जुगा माघे। अहे कर करे सो अहे कर पाए, कोई ना पकड़िए किसे थाए। हर जियो सोई करे,

गुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ। मां बिखादी दुष्ट अपवादी ए पुनीत सिंगारे, जन्म पवंते नरक पड़ंते इनके कुल उधारे। कोई ना जाने कोई ना माने,

मो कुटुंब दिखे रसमते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ शोभन आनंद उलास मान मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तेल मर्म ना लहे कर कृपा रखे सत्संगे नानक शरण आहे आसा महला पंजवा ए पदे ओहा प्रेम प्री हरहाओ कनक मानक गज मोती न लालन नह नहा नहीं राजन पागन हुकुम न साधन किश किश न चाही चरणन शरणन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तप्त हरी मिले प्रेम प्री आसा महला पंजवा गुरे दिखायो लोए न रहाओ ईत ऊत खट खट खट खट तू ही मोहना कारण करना तारण करना एक सोयना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवा हर घर नाम अमोला ओ सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ न जाई ओ अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक ओ हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत निभागे ठाकुर आयो आहे हरहाओ ना पदार्थ हुए सकारथ हृदय चरण बसाहे ये मुक्ता ये जुगता रखो संत संगाहे।

ऐसे लालन पायो री सखी हरहाओ पंकज मो सरखा पागनी चल ले हरखा गैड्यो मूड नारखा आनन उपाव करखा तो निकसे सरन पै री सखी थेर थेर चेत थेरखा पान ग्रहो समसरखा अंतर एक पेरखा बार अनेक तरखा राजन योग करखा कहो नानक लोक अलोगी री सखी आसावरी महला पंजवा मनसा एक मान हां गुरस्यो नेत।

अनप्राणः रवयो सर्वथानः लयो जं पयानः पायो पेड़ थानः तो चुकी सगल कान लैनो जिस मथानः पय पावक पार प्राणः निरकर तिसे थानः हार रस रसे मानः लाती तिस पूगानः नानक सह सुमायो रे मना आसावरी महला पंजवा हर हर हर गुणीगा जपिगे सज तुनीगा साधु रसन पनीगा छूटन दिल सुनीगा।

जीवत से रहेगा जिसे कृपाल होएगा। नानक भगत सोए एक ओंकार सदगुर प्रसाद रागयस महला नावा। बिरथा कहो कौन सो मन की लोभ ग्रस्यो दसू दिस तावत आसा ले जो तन की रखाओ। सो के हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की द्वारे द्वार स्वान ज्यो डोलत नै सुध राम भजन की। मानस जन्म अकार्थ कोवत लाजन लोक असन की। नानक हर जस क्यों नहीं गावत उमत बिना से तन की। अराग अस महला पहला अष्टपदियां हर दूजा एक ओंकार सदगुर प्रसाद उत्तर अवखट सरवर नावे। बके न बोले हर गुण गावे जल आकाशी सुन समावे। रस सत चोर मारस पावे ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे। पार पुर तारया सब ठोरे रहाओ सच ब्रत नेम न काल संतावे। सदगुर शब्द क्रोध जलावे गगन निवास समाध लगावे। पारस परस परम पद पावे सच मन कारण तत् बेलोवे। सुबर सरवर मैलन थोवे जैसे उराता तै सो होवे। आपे करता करे सो होवे गुर है शीतल अग्न बुझावे। सेवा सुरत विभूत चढ़ावे दर्शन आप।

ते मन तीरा ऐसा साओ सरापी कर साची नगर एक लिवतर हरहाओ पूंजी नाम निरंजन सार निर्मल साज रता पैकार सिवत सहज कर गुर करतार आसा मनसा सब जलाए राम नारायण तय कहाए गुर ते वाट मैल कर पाए कंचन काया जोत अनूप तिर पवन देवा सगल स्वरूप मैं सो तन पल्ले साच अकूट पंच तीन नव चार समावे तरण गगन तल तार रगावे बार जातो उल्ट परावे मूर्ख होए न आखी सूजे जे वारस नहीं कहया बूझे पेता माता जल स्यो लूजे ऊतम संगत ऊतम होवे गुण को तावे अवगुण तोवे किन गुरसेवे सहज न होवे हीरा नाम जवे हरलाल मन मोती है तुसका माल नानक परखे नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचारी गुरमुख सचा नाम मुरारी अरहाओ आए निस निर्मल थान सुथान तीन पवन ने केवल ज्ञान साचे गुरते हुकुम पछान साचा हरख नाई ते सोग अमृत ज्ञान महारस भोग पंच सुमाई सुखी सवलोक सगली जोत तेरा सो कोई आपे जोड़ बिछोड़े सोई आपे करता करे सोई ताए उसारे हुक्म सुमावे हुक्मो वरते जोत पावे गुर बिन पूरा कोई न पावे बालक गिरद न सुरत प्राण पर जो बिन बूढ़े अब महान बिन नावे क्या लहस निदान किसका आन थान सहज न जाना परम पुलाना फिर पछताना गर पागी बौरा बौराना बूढ़त जग देखे तो डर पागे सदगुर राखे सेवड़ पागे।

मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम तृप्तस खोजत पाओ सहज हरे हरहाओ काम क्रोध मन मोह शरीर लभ लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नामन साच पछाणे अंतर की गत गुरमुख जाने साज शब्द बिन मैल ना पछाणे निरंकार में आकार समावे अकल कला सच साच टिकावे सोनर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम सिया सुखदाता अनदन बाणी नामे राता मेरा प्रलाए ता को लागे होमे मारे सब दे जागे ऐथे उथ सदा सुख आगे मन चंचल बिद ना ही जाने मन मुख मैल शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम वखाणे हर जू आगे करी अरदास साधु जन संगत हुए निवास।

नीत नीत कर बंधिए जे रहना होई, पिंड पवे जीव चरसी जे जाने कोई, ओही ओही क्या करो है होसी सोई, तुम रोवोगे ओसनो तुमको कौन रोई, धंधा पिट्यो पाई हो तुम कूड़ कमावो, ओ ना सुनी कथी।

गर्भ बन जाइए। मन मुखिया सिर मार वाद खपाइए, ठग मुठी कूड़ियार बन चलाइए। साहिब हृदय वसाए न पछोताव ही, गुण गां बख्शनहार शब्द कुमाव ही। नानक मंगे सच गुरमुख खालिए, मैं तुझ बिन अवर न कोए नदर निहालिए। आसा महला पहला क्या जंगल ढूंढी जाए, मैं कर बन हरियावला। सच टिके कर आए शब्द उतावला, जय देखा तै सोए अवर न जानिए। गुर की कार कुमाए मैल पछाणिए, रहाओ आ मिलावे सच ता मन पावई। चले सदा रजाए अंक समावई, सच्चा साहिब मन वसे वसिया मन सोई। आपे दे वड्याईया दे तोट न होई।

नरात नाम अमोलह तू उत्तम हो नीत सेवक कांडिया नानक नदर करे हो मिले सच वांडिया आसा महला पहला आमन जाना क्यों रहे तो मिला होई जन्म मरण का दुख कणो निर्शेषा दोई बिन नावे क्या जीवना फिट त्रिगच तराई सतगुर साधना सेवया हर भगत ना पाई हरहाओ आमन जामन तौ रहे पाइये गुरपूरा राम नाम तन रास दे बिन से प्रमकूरा संत जना को मिल रहे तान तान जस गाये आदि पुरख अपरंपरा गुरमुख घर पाए नडुए सांग बनाया बाजी संसारा खेन पल बाजी देखिए उजरत नहीं बारा होमे चौपड़ खेलना झूठे अहंकारा सब जग हारे सो जने गुर शब्द विचारा जो अंधले हथ टोनी हर नाम हमारे राम नाम हर टेक है निद दौत सवारे ज्यो तू राखे त्यो रहा हर नाम आधारा अंत सखा ई पाया जन्म मुक्त द्वारा जन्म मरण दुख मेटे जप नाम मुरारे नानक नाम ना विसर पूरा गुर तारे आसा महला तीजा अष्टपदियां।

दास तुम्हारे रिस प्राण आधारी ताके रूप न जागी लखने क्या कर आग विचारी तीन गुणा तेरे जोगी अंतर चारे तेरी आखाणी कर्म होवे ता परम पद पाइये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे पराणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आमन जानी जान तो पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे ए आणी चारे वेद ब्रह्मे को दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताक हुगमना बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगे जुगे के राजे किए गावे कर अवतारी इन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब साचा देता साच वखाणी जा को सच बुझावे अपना है दे नाम सुमाणी आसा मोहल्ला तीजा सदगुर हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन मसाया शब्द चीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत् ज्ञान देवन वाला शब्द जाने गुरमुख पाएगे नाम निधान रहाओ सदगुर भेटे की वडियाई जिर ममता अग्न तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई विण गुर पूरे कोए न जानी माया होए दूजे लोभाणी गुरमुख नाम मिले हर बाणी गुर सेवा तपा सिर तप सार हर जीव मन वस सब दुख विसारण हार दर साचे दिसे सत्यार गुर सेवा ते तिरपावन सोजी होए आप शान घर पावे सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखे उर तारे साची शोभा साग द्वारे सेवड़ भागी जे गुर सेवा लाए आन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए।

बिन नावे सब नीच जात है, दिष्टा का कीड़ा होए, हाँ हो कर दी सब फिरे, बिन शब्दे हो ना जाए, नानक नाम रते तिन हो मैं गई, सच्चे रहे सुमाए, आसा महला तीजा, सच्चे रते से निर्मले, सदा सच्ची सोए, ऐसे कर कर जाप दे, आगे जुग जुग प्रकट होए, ए मन रूड़े रंगले, तू सच्चा रंग चढ़ाए, रूड़ी बाणी जे रपे, ना यो रंग ले ना जाए, हरहाओ हम नीच मैले अत अपमानी, दूजे पाए विकार, गुर पारस मिले कंचन होए, निर्मल जोते पार, बिन गुर कोई ना रंगी है, गुर मिले रंग चढ़ाओ, गुर के पाए पाए जोरते, सिवती सच सुमाओ, पाए बिन लाग न लग गई, नामन निर्मल होए, बिन पे कर्म कमावने, झूठे ठाओ न कोए, जिसनु आपे रंगे सो रबसी, सत्संगत मेलाए, पूरे गुरते सत्संगत उपजे, है जे सच सुपाए, बिन संगती सब ऐसे रहे, जैसे पलटोर, जिनकी तेत से ना जाननी, बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाचे अवगुण विकणे, गुर

नाम ते आई है, ज्ञान प्रगट होए, ए मन मत जाने हर दूर है, सदा वेख अधूर, सद सुनदा सद वेखदा, शब्द रहा भरपूर, रहाओ गुरमुख आप पछाणिया, तिनी एक मन ख्याया, सदा रवे तेरे अपना, सच्चे नाम सुख पाया, ए मन तेरा को नहीं, पर वेग शब्द विचार, हर सरनाई पज पौ पाए मोह द्वार, सब सुनिए शब्द बुझिए, सच रखे लिवलाए, सब देखो में मारिए, सच्चे महल सुख पाए, इस युग में शोभा नाम की, बिन नावे शोभना होए, ए माया की शोभा चार दिहाड़े, जांदी बिलमना होए, जिन्नी नाम सारे से मोए मर जागे, हर जात न आयो दृष्टा माए सुमाए, एक आपे बक्स मलायन अन दिन नामे लाए, सच कुमारे सच रहे, सच्चे सच सुमागे, बिन शब्दे सुनिए ना देखिए, जग बोला अन्ना परमाए, बिन नावे दुख पाए सी, ना मिले तसे रजाए, जिन बाणी से चित लाया, सेजन निर्मल परमाण, नानक नाम तिना कदे ना विसरे, ते दर सच्चे जान, आसा महला तीजा, शब्दो ही भगत जाप दे, जिनकी बाणी सच्ची होए, विचू आप गया नव मनिया, सच मिलावा होए, हर हर नाम जन की पत होए, सब तिना का जन्म है, तिन मन ने सब कोए, रहाओ हमे मेरा जात है, अत क्रोध अवमान, सब मरे ता जात जाए, ज्योति ज्योत मिले भगवान, पूरा सदगुर पेटे सबल जन्म हमारा, नाम न मेरे दे पाया, परे अखुट पंडारा, आवे इस राशि के वापारिये, जिन्ना नाम प्यारा, गुरमुख होवे सो तन पाए, तिन अंतर शब्द विचारा, भक्ति सार ना जाननी, मनमुख अहंकारी, तुरु आप खुआयन, जुए बाजी हरी, बिन प्यारे भगत न होवई, ना सुख होए शरीर, प्रेम पदार्थ पाईए, गुर भगती मन तीर, जिनु भगत कराए सो करे, गुर शब्द विचार, हृदय एको नाम स, होमे दुबदा मार, भगता की जद पत एको नाम है, आपे लए स्वार, सदा सरनाई तिसकी, ज्यों पावे त्यों कार्ज सार,

प्रसिमरिए प्यारे दर्शन कौ बल जाओ, जे सिमरत दुख बीसरे प्यारे सो क्यों तजना जाए। त्यो तन वेती संत पै प्यारे प्रीतम दे मिलाए, तुसी गार बिखिया के भी।

सम कर जाने इन विद साहेब रमत रहे चचे चार विरजन साजे चारे खानी चार जुगा जुग जुग जोगी खानी पोगी पढ़िया पंडित आप थिया छे छे छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम उपाय भुलाई ने आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलया जजे जान मंगत जन जच लग चौरासी तीह पवया एको लेवे एको देवे अवर ना दूजा मैं सुनया झजे चूर मरो क्या प्राणी जो कुछ देना सो दे रहा दे दे वेखे गुम चिलाए ज्यो जिया घर जक पया न्यन्ये नदर करे जा देख दूजा कोई नाही एको रब रहा सब थाई एक वसया मन माही तट टंच करो क्या प्राणी तड़ी के मौत के उड़ चलना जुए जन मन हारो अपना भाज पड़ो तुम घर सरना।

दिया सब नी लिया, तरमी करमी हूं पया, नन्ने ना पोनित पुगे, ना डीठा ना सम्मलया, गली हो सोहा गण पैने, तंतन कबहू मैं मिलया, पपे पासाओ परमेश्वर, वेखण को प्रपंच किया, देखे बूझे सबके जाने, अंतर बाहर रब रहे, पपे फाही सब जग फासा, जम के संगल बंद लया, गुर प्रसादी सेनर उबरे, जे हर शरणागत

तन तेरे मिला हुए स्वामी आप कृपा करे सेजा सुहावी संग तिरक सात सर अमृत परे कर दया मया दयाल साचे सबद मिल गुण गावो नानक हर वर देख बिगसी मुंद मन उमाह मुंद सहज सलोनड़िए एक प्रेम बेनंती राम मैं मंतन घर पावे प्रसंग मराती राम ता प्रेम राती हर बेनंती नाम हर के सुख वसे तो गुण पिछाने ता प्रव जाने गुणे वस अवगुण नसे तुझ बाज एक तेल रह ना सक कहन सुन ना तीजे नानका प्रयो प्रयो कर पुकारे रसन रस मन पीजे सखी हो सहेलड़ी हो मेरा फिर वणजारा राम हर नामो वणजय रस मूल अपारा राम मोल अमोलो सज कर टोलो प्रभावे ता मुंद पली एक संग हर के करे रलिया हो पुकारी दरखली कारण कारण समरसरी तर आप कार्य सारे नानक नदरी तन सुहागन शब्द अब साधार हम कर साचा सोयलड़ा प्रभ आयड़े मीता राम रावे रंग रातड़िया मन लीड़ा दीता राम अपना मर दिया हर वर लिया ज्यों पावे त्यों रावे तन मन पिरे आगे शब्द सुभागे कर अमृत फल पावे बुद्ध पाठ ना पाईए बहुत चतराईए पाए मिले मन पाने नानक ठाकुर उम्मीद हमारे हम नहीं लोग।

ते जाए स्वामी तिन फल तोट न आवे तिन जरा न मरना नरक ना परना जो हर नाम ते आवे हर हर करे से सूके नाही नानक पीड़ ना खाए जियो नाम लैन से सोह है तिन सुख पल होवे मन सेजन जाए जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला पहला शांत कर तीजा तू सुन हरना कालिया की वाड़गेरा ताराम बिखबल मीठा चार दिन फिर होवे ताता राम फिर होए ताता खरा माता ना बिन प्रताप ओ जेव सायर दे लहरी बिजली जिवे चमक हर बाज राखा कोए नाही सोए तुझे बिसारिया सदकहे नानक चेत रे मन मरे हरना कालिया पावरा फूल पवंतिया दुख अत पारी राम मैं गुर पूछा अपना साचा बिचारी राम बिचार सगुर मुझे पूछया पवल बेली रातो सूरज चढ़या पिंड पड़या तेल तामन तातो जाओ मग बादा खाए चोटा शब्द बिन बेता लिया सच कहे नानक चेतरे मन मरे पवरा कालिया मेरे जीड़या परदेसिया इत पवे जंजा ले राम साचा साए मन मस की फासे जम जा ले राम मछली विशुन्नी नैन रुन्नी जाल बद्ध कपाया संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया परत कार चित लाए हरस्यो छोड़ मनो अंदेसिया सद कहे नानक चेतरे मन जीड़या परदेसिया नदियां माव शून्या मेला संजोगी राम जुग जुग मीठा विस परे ओ जाने जोगी राम कोई सहज जाने हर पछाणे सदगुरु जिन चेतया बिन नाम हर के परम पूले पचे मुद अचेतया हर ना भगत नारे साचा से अंत ताही रुनिया सदकहे नानक शब्द साचे मेल चिरी मछुनिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला तीजा शंत कर पहला हम करे साचा सोहला साचे शब्द सुहाया राम तान पिर मेल पया प्रभ आप मिलाया राम प्रभ आप मिलाया सच मन वसाया कामन सहजे माती गुर शब्द सीगा।

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलो जन्म सवाया दूजड़े कामन परम पुली हर वरना पाए राम कामन गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम बिरथा जन्म गवाए मानमुख ए आणी औगुणवंती चूरे अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता तिर मिलिया हदूरे देख तिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाए नानक विण नावे कामण परम पुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए तिर संग कामण जानिया गुरमेल मिलाई राम अंतर शब्द मिली सहजे तप्त बुझाई राम शब्द तप्त बुझाई अंतर सांत आई सहजे हारस चाखिया मिल प्रीत में अपने सदा रंग माने सच्चे शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़ पंडित मुनी थाके एकी मुक्त न पाई नानक बिन भगती जग बौराना सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन अंद पया हर जीव मेल प्यारे राम सा तन हर के रस रसी गुर के शब्द अपारे राम शब्द पारे मिले प्यारे सदा गुण सारे मन मसे छेद सुहावी जां तिर रावी मिल प्रीतम अवगुण नसे जित कर नाम हर सदा त्याई है सोहिलड़ा जुग चारे।

नाम समाया, जिन अंतरे राम नाम वस, तिन चिंता सब गवाया राम, सब अर्था सब धर्म मिले, मन चिंदिया सो फल पाया राम, मन चिंदिया फल पाया राम नाम ते आया, राम नाम गुण गाए, दुरमत कबुद गई सुध होई, राम नाम मन लाए, सफल जन्म शरीर सब हुआ, जित राम नाम परगासया, नानक हर पसदा दिन राती, गुरमुख निर कर वासया, जिन श्रद्धा राम नाम लगी, तिन दूजे चित न लाया राम, जे धरती सब कंचन कर दीजे, बिन नावे अवर ना पाया राम, राम नाम मन पाया, परम सुख पाया, अंत चलदिया नाल सिखाई, राम नाम तन पूंजी संची, ना डूबे ना जाई, राम नाम ए जुग में तुलगा, जमकाल नेड़ ना आवे, नानक गुरमुख राम पछाता, कर कृपा आप मिलावे, रामो राम नाम सत्य, सत गुरमुख जानिया राम, सेवको गुर सेवा लागा, जिन मंतन अर्प चढ़ाया राम, मंतन अर्पया बहुत मन सरदया, गुरसेवक पाए मिलाए, दीना नाथ जिया का दाता, पूरे गुर ते पाए, गुरु सिख सिख गुरु है, एको गुर उपदेश चलाए, राम नाम मंत हिरदय देवे, नानक मिलन सुपाए, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, आसा शांत महला चौथा, कर दूजा हर हर करता दुख बिनासन, पतत पावन हर नाम जियो, हर सेवा पाई परम गद पाई, हर उत्तम हर हर काम जियो, हर उत्तम काम जपिए हर नाम, हर जपिए अस्थिर होवे, जन्म मरण दोवें दुख मेटे, सहजे ही सुख सोवे, हर हर कृपा तारो ठाकुर, हर जपिए आत्म राम जियो, हर हर करता दुख बिनासन, पतत पावन हर नाम जियो, हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम, हर जपिए सब गुर पाए जियो, गुरमुख हर पढ़िए गुरमुख हर सुनिए, हर जबत सुनत दुख जाए जियो, हर हर नाम जपिया दुख बिनसिया, हर नाम परम सुख पाया।

अंतर कपट विकार है, तिना रोए क्या कीजे, हर करता सब किसी जानदा, सिर रोग हाथ दीजे, जिना नानक गुरम खिरदा सुध है, हर भगत हर लीजे, आसा महला चौथा, जिन अंतर हर हर प्रीत है, तेजन सुगड़ सियाने राम राजे, जे बारों पोल चुक बोल दे, पी खरे हर पाने, हर संतानु होर थाओ नाही, हर मान निमाने, जन नानक नाम दीवान है, हर तान सताने, जिथे जाए बहे मेरा सदगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, गुर सिखी सो थान पालिया, लय तूर मुख लावा,

की तिशना पुख सब उतर जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तेन जम नेड़ न आवे जन नानक कहो हर कृपा कर निध जपे हर नाम तरावे जिन्नी गुरमुख नाम ते आया तिना फिर बिघन न हो ई राम राजे जिन्नी सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन्नी सतगुर प्यारा सेवया तिना सुख सद होई जिना नानक सतगुर पेटिया तिना मिलया हर सोई जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखण हारा राम राजे तिन की निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर सेती मन मानिया सब दुष्ट चक मारा जन नानक नाम ते आया हर रखण हारा हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम।

प्रभ करमय सुमरत अगत अपार निर्मल। सुनो स्वामी बिनु एहो पर जोड़ नानक दान मांग जन्म मरण निवार लेहो। अपराधी मतहीन निर्गुण अनाथ नीच सर कठोर कुलहीन व्यापत मोहकीच मल परम कर्म अंग ममता मरण चीत ना आवै बनता विनोद आनंद माया अज्ञानता लपटावे किसे जोबन बदे जरुआ दिन हारे संग मीच बिनवंत नानक आस तेरी सरण साधु राख नीच परमे जन्म अनेक संकट महाजोन लपट रहो ते संग मीठे भोग सोना परमत पार अगन ते आयो बो परदेस तायो आपोड तारी प्रमुरारी सर्व सुखर नायो रखन हारे प्रप्यारे मुझ ते कछु न होआ हो ना सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरे पौन नाम तारीख उधारे भगते संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण सुन श्रवण बानी पुरख ज्ञानी मन निधान ना पावगे हर रंग रते प्रभिधाते राम के गुण गावगे बजद कागज बनराज कलमा लिखन को जे होए पवन बेअंत अंत ना जाए पाया गई नानक चरण शरण आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान ताकी शरण गही निरप पए प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुमीत सुरजन इष्ट बंध पजाणिया गए कंठ लाया गुर मिलाया जस बेमल संत वखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप पए राम नाम और हार बेके दिवस गए गत परम मोह विकार बिनसे जोन आमन सब रहे अग्न सागर पए शीतल साद अंचल गहे रहे गोविंद गोपाल दयाल समृत बोल साधु हर जय जय नानक नाम ते आए पूर्ण साध संग पाई परम गते जय देखो ते संग एको रब रहे घड़कड़ वासी आप विरले किने लया जलसल मैयल पूर पूरन कीड़खत सुमान्या आद अंते मसोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण जन कहया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नान करा रहया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कालमल पाप टरे दुख पुग दर दर नाठ प्रगट मग दिखाया मिल सा संगे नाम रंगे मन लोहड़ी द पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल समूह सब तरे दिन सरैन आनंद अन दिन

बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज सुमाणी सुख सोय लड़े हर गामन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सरसे हर नाम रहसे प्रभु आप कृपा तारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभु बनवारिया शुभ दिवसे आए सहज पाए सगल निध प्रा पागे बिनवंत नानक सर।

ताप चितवो चितनाथ, चितवो चितनाथ रे रख ले वो शरण अनाथ रे। मिल चाओ चाईले प्राण, सुंदर तन ध्यान, सुंदर तन ध्यान हे मन लब्ध गोपाल ज्ञान हे। जाचक जन राखत मान, प्रामाण पूर्ण दुख बदीरन, सगल इश पूजंतिया। हर कंठ लागे दिस भागे, मेरे नहा सेज सुहंतिया। प्रभ दृष्ट धारी मिले मुरारी, सगल करमल पए खान। बिनवंत नानक मेरी आस पूरन,

पौड़ी। सच्चा साहिब एक तू, जिन सचो सच वरताया, जिस तू देत मिले सच, ता तिनी सच कमाया। सदगुर मिले सच पाया, जिनके हिरदे सच वसाया। मूर्ख सच न जाननी, मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया। सलोक महला पहला, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ परिये साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाईए, पढ़ पढ़ गड्डिये खात, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास। नानक लेख एक गल, होर हो में चखना चाख, महला पहला, लिख लिख पढ़िया।

प्रायापे होवे कट न कोई आखै पद परवाना पिछे पाईए ता नानक तोलिया जापै महला पहला वदी सो वजग नानका सच्चा वेखै सोए सबनी छाला मारियां करता करे सोए अगे जात ना जोर है।

साम कैसे तंबर स्वामी सच में आछे साच रहे सबको सच समावे रेग कह रहया परपूर राम नाम देवा मैं सूर नाए लय प्राशित जाहे नानक तो मोख अंतर पाहे जुज मैं जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया पार जाद गोपी ले आया बिंद्राबन मैं रंग किया कर्म में वेद अथर्वण हुआ।

पौड़ी सदगुरु विट्टो वारिया जित मिलिया खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इनी नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रिया सदगुरु है बोहेता विरले किने विचारिया कर कृपा पारे उतारिया श्लोक महला पहला सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच उए जे आवे आस।

हंस अकेला जाई, कहेत कबीर सुनो रे संत, ऐसा गर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है,

फिर पछताना बिरध पायो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भोजंग बलयो अरहाओ चूके सर्वर पाल बंधावे लूणे खेत हथवार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुग्ध फिरे चरण शीश कर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे जेवा बचन शुद्ध नहीं निगसे ताबरे तर्म की आस करे

मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन तिरपन डसियले गुर प्रसाद डीठी रहाओ सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साज पछाने

राम रमत तिस सबके सूझे, बाईस चौपदे तथा पंच पदे, आसा श्री कबीर जीओ के तिपदे अठ, दो तुके सत।

आस बड़ पाग हमारा, तुर नर मुनजन कौतक आए, कोड़ ते तीस उजाना, कह कबीर मोए ब्याए चले हैं, पुरख एक भगवाना, आसा सास की दुखी ससुर की।

करे लड़ाई माया सद मतवारी। बड़े पाई के जब संग होती तब हो ना प्यारी। तहत कबीर पंच को चगर जगरत जन्म गवाया। झूठी माया सब जग बाध्या मैं राम रमत सुख पाया।

अस देखियो जग मेरा समाई गुप्ता हीरा प्रगट पयो जब गुर गम दिया दिखाई आसा पहली क्रूप कुजात कुलखनी सौरे पेई है बुरी आपकी स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उदर तरी पली सरी मोई मेरी पहली बरी जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ को कबीर जब लौरी आई बड़ी का सुहाग टरेओ लौरी संग पई अब मेरे जेठी और तरेओ आसा मेरी बौरिया को तनिया नाओ ले राख्यो राम जनिया नाओ एन मुंडियन मेरा कर तुंदरावा बिटवे राम रम।

अंतर मैल जे तीर्थ नावे तिस बैकुंठ न जाना, लोक पतीने कछु न होवे, नाही राम ए आना। पूजो

अबाद लागे कछ ना चले उपाय। रविदास दास उदास तज प्रम तापन तब गुर ज्ञान। भगत जान पै हरन परमानंद करो निदान। आसा संत तुझी तान संगत प्राण। सदगुर ज्ञान जाने संत देवा देव। संत की संगत संत कथा रस। संत प्रेम माजे दीजे देवा देव रखाओ। संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलगणी। और एक मांगो भगत चिंता मन जनी लखावो असंत पापी सन। रविदास पणे जो जाने सो जान। संत अनंत अंतर नाही आसा तुम चंदन हम इरंड बापरे। संग तुम्हारे बसा नीच रूख ते ऊज पए है गंध सुगंध निवासा। माधव सत संगत शरण तुम्हारी हम अवगुण तुम्हें उपकारी। रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपील हम परे जस कीरा। सत संगत मिल रही है माधो जय।

प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई पुतकारी ओ कर कर सुनिया हिरदे वसिया पार ब्रह्म भगता मैं गनिया ए बिद सुन के जट रो उठ भगती लागा मिले परतख गुसाइया तन्ना वडभागा रे चित चेतस की ना दयाल दमोदर बिबे न जानस कोई जे तावे ब्रह्मंड खंड को करता करे सोई हरहाओ जननी केरे उदर उदकमै

पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मनमाही पाखण कीट गुप्त होए रहता ता चो मार्ग नाही कह तन्ना पूर्ण ताहू को मात्रे जी डराही आसा शेख फरीद जियो की बाणी एक ओंकार सदगुर प्रसाद दिलो मोहब्बत जिन से ही सचया जिन मन होर मुख होर ते कण

रीत है हर मेरी, हर मेरी कथा कहानी जी। गुर प्रसाद मेरा मन पीजे, एहा सेव बनी जियो अरहाओ। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा पाई। हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त, हर मेरा साक अंत होए सगाई। हर बिन होर रास कूड़ी।

माई बाप पुत्र सबहर के किए, सबना कौसन बंद हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वस गए शरीर। रहाओ भक्त जना को श्रद्धा आप हर लाई, विचे गृहस्थ उदास रहाई।

अंतर मैल न उतरे हो में बिन गुरबाजी गारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा थारी। होड़ मदे को विरला सेवक होर सगले ब्योहारी हरहाओ सात वेद सिमर सब सोधे

अपन हाथ मतात, सियानप काहू कामना आत, जो अनरूप्यो ठाकुर मेरे होए रही ओ बात रहाओ। देश कमामन तन जोरन की, मनसा बीचे निकसे सास, लश्कर नेब खवा सब त्यागे, जंपर ऊठ सिदास। होए अनन महर की दृढ़ता, आपस को जानात, जो अनिंद निंद कर छोड़ो,

साध संग नानक दर्स पायो बिनसो सगल नेहोरा गुजरी मोहल्ला पंजवा आल जाल प्रमोत जावे प्रसे तीरंग लाई मन को ए उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जे भेटे टूटे माया बंद बिसर ना कब हो जाई हराओ करत करत अनकबो पाती नीकी ए ठहराई मेर साधु हर्ष।

दुख अनहेरा पै बिनासे, पाप गए निखूट, हर हर नाम की मन प्रीत। मेर साध बचन गोविंद ते आए, महान निर्मल रीत रहाओ, जाप ताप अनेक करणी, सबल सिमरत नाम, कर अनुग्रह आप राखे, पै पूर्ण काम, सास सास ना बिसर कब हूँ।

आराध श्री तर सबल मूर्त करण कारण जोग गुण रमन सरमन अपार महिमा फिर ना होत बियोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरन काल

पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा ना हो रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वडे भाग लेव लागी। कबल प्रकाश पए सासंगे दुरमत बुद्ध ते आगी। आठ पैर हर के गुण गावे सिमरे दीन दयाला। आप तरे संगत सब उधरे बिन से सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ। शरण पर्यो नानकता तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपदियां महला पहला कार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नगरी पंच चोर बसियले

परे गुर शरण तुम्हारी मैं अवर ना दूजी पाई। आप तब एको एक पुकारो आद जुगा सिखाई। ऐ जी राखो पैज नाम अपने की तुझगी स्यों बने आई। कर कृपा गुर दर्श दिखावो हम में शब्द जलाई। ऐ जी क्या मांगो किस रहे ना दिसे हे जा।

दुर्मत व्यापे जिन अंतर्म हो गुबारी। संत जिना की कथा ना पावे ओए डूबे साण परवारी। निंदक निंदा करमल तोवे ओ माल पग माया तारी। संत जिना की निंदा व्यापे ना उरवार ना पारी। यो प्रपंच खेल किया सब करते हर करते सब कल तारी। हर एको सूत वरते।

क्रोध हरन मद मोह दैन मुरार मन मकरंद जन्म मरने वार धरणी तर पत राग परमानंद जलत अनक तरंग माय गुर ज्ञान हरिद मंत छेद अंग बुद्ध करना मैं चिंत मेट पुरख अनंत सिमर स्मृत पल मुहूर्त प्रत्यान सहज समाध दीन दयाल प्रसन्न पूर्ण जाचिगे रज साध मोह मिथन दुरंत यस बसना बेकार रख धर्म परम बिदार मनते उदर हर निरंकार तनाड़ आड़ भंडार हर निध

पौड़ी ए मन अत लोभी नित लोभे राता माया मनसा मोहनी दहत फिराता अगे नाओ जात ना जाए सी मनमुख दुख खाता रसना हरसना चखे फीका बोलाता जिन्ना गुरमुख अमृत चाखे।

क्रोध लोभ छोड़िए, दीजे अगन जलाए, जीव दयान नित जापिए, नानक साचा नाओ मोहल्ला पंजवां, सिमरत सिमरत प्रभ अपना।

का बोलिया प्रवान है दरगे पवे थाए भगता तेरी टेक अरते सच नाए जिसनु हुए किरपाल तिसका दुख जाए भगत तेरे दयाल ओना मेर पाए दुख दर्द वड़ रोग ना पोगे तिस माए भगता यो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रैन इको एक त्याए पीवत अमृत नाम जान नामे रहे अघाए श्लोक महला पंजवा कोट बिघन तिस लागते जिसनु विसरे नाओ नानक अनदिन बिरपते ज्यो सुन्ये करकाओ महला पंजवा प्री मिलावा जाथिये साई सुहावी रुत कड़ी मोहत न विसरे नानक रविये नित पौड़ी सूर बीर वरियाम किने ना होड़िये फौजतानी हाठ पंचा जोड़िए दस नारी अवधूत देन चमोड़िए जिन जिन लैन रलाए इहो इना लोड़िए तै गुण इनके वस किने ना मोड़िए परम कोट माया खाई कौ कित बिद तोड़िए गुरपूरा आराध बिखमदल फोड़िए हौ इस अगे दिन रात रहा कर जोड़िए श्लोक महला पंजवा केलवग सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोड़ केले सा उपजे नानक विसरे ना।

क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट बासना निवार राख लियो प्रभे अपने नानक सरबरे हार महला पंजवा खांदिया खांदिया मोह कठा पए नंदिया सब अंग नानक त्रिग तिना दा जीवया जिन सच ना लगो रंग पौड़ी।

रंग रत्ते से जोन ना जोमना अंतर बार एक नैन अलोमना जिनी पिछाता हुक्म तिन कदे ना रोमना नाओ नानक बख्शीस मनमाए परोमना श्लोक महला पंजवा जीव दयाना चेत्यो मुआर लंदड़ो खाक नानक दुनिया संग गुदारिया सागत मूड ना पाक महला पंजवा जीवंदया हर चेत्या मरंदया हर रंग जन्म पदार्थ तारिया नानक साधु संग पौड़ी आद जुगा दिया रखण वालिया सच नाम करतार सच पसारिया ऊणा कही न होए घटे कड़ सारिया मेरवान सुमरथ आपे ही कालिया जिन मन मुठा आप से सदा सुखा लिया आपे रचन रचाए आपे ही पालिया सब कुछ आपे आप बेअंते पारिया गुरपूरे की टेक नानक संभालिया श्लोक महला पंजवा आद मद अर अंत परमेश्वर रखिया सतगुर दिता हर नाम अमृत चखिया साधा संग अपार अन दिन हर गुण रवे पाए मनोरथ सब जोनी नह पवे सब कुछ करते हथ कारण जो करे नानक मंगे दान संता तूर तरे महला पंजवा तिसनु मन वसाए जिन उपाया जिन जन त्याया खसम तेन सुख पाया सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्मे बुझ निहाल खसम फुरमाया जिस हुआ आप कृपाल सो नह फरमाया जो जो दिता खसम सोई सुख पाया नानक जिसे दयाल बुझाए हुक्म मित जिसे भुलाए आप मर मर जम्मे नित पौड़ी निंदक मारे तत्काल खिन टिकन ना दिते रदास का दुख ना खप सके फड़ जो नी जुते मत्थे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते दुख लगे बिल लाणिया नरक कोर सुते कंठ लाए दास रखियन नानक हर सत्ते श्लोक महला पंजवा राम जपो वडभागी हो जलथल पूर्ण सोए नानक नाम त्याए है बिघन ना लागे कोए महला पंजवा कोट बिघन तिस लागते जिसनु विसरे नाओ नानक अन दिन बिरपते जो सुन्ये कर काओ पौड़ी सिमर सिमर दातार मनोरथ पूरिया इश पुन्नी मन आस गैब सूरिया पाया ना मनदान जिसनु पालदा जोत मिली संग जोत रहया कालदा सुख सहज आनंद उठे तित कर आमन जान रहे जन्म ना तहा मर साहेब सेवक एक एक दृष्टाया गुर प्रसाद नानक सच समाया शुद्ध राग गुजरी भगतां की बाणी एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री कबीर जीओ का चौपदा कर दूजा दूजा चार पाव दो सिंह गुंग मुख तब कैसे गुण गई है उठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूंड लुकई है हर बिन बैल बेराने होई है फाटे नाकन टूटे कदन कोदो को पुस गई है रखाओ सारो दिन डोलत बन मैया अजो ना पेट अगई है जन भगतन को खो।

पही देव गंधारी महला पंजवा हर प्राण प्रभु सुख दाते गुर प्रसाद काहू जाते है रघाओ संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम तिनको काल ना खाते है रंग तुम्हारे लाल पै है राम नाम रसमाते महा किरबिख कोट दुख रोग प्रभ

पुराण अवलोके सिमरत तत् विचारा दीना नाथ प्राण पद पूर्ण भवजल उदर नहार आद जुगाद भगत जन सेवक ताकि बिखे अधारा तिन जन की तूर बांचे नित नानक परमेश्वर देवनहार देव गंधारी महला पंजवा तेरा जन राम रसायन माता प्रेम रसा नित जाको उपजी छोड़ न कथु जाता रघाव बैठत हर घर सोवत हर घर हरस भोजन खाता अरसर तीर्थ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता सावल जन्म।